लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजिब रेट पे। डेली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493 5

0: सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाई बैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाई बैक एंड एक्सचेंज तुरंत, कैश

0: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले, दालां, ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते लै सकदे हो। आओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी, नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार, मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
3: ਵੈਰਤਮਾਨ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ। ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਦੇ ਕਰੋੜ ਸਰਪੰਚ।
4: ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।
3: ਸਰਪੰਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਬਾਲ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮ। देखो सरपंच 10 जुलाई नू तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च।
5: हां जी हां जी ओए हां जी हां जी
6: हां जी रे।

0: होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लिए बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नो 04332802552 ते 04332802522 ते। सोना चाहिदा
1: भरोसा चाहिदा
0: क्वालिटी ते बायबैक वी चाहिदा चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे जिथे बाई कैरेट गोल्ड क्लासी सिल्वर डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत कैश चाहिदा गोल्ड लोन इजी एंड सेफ रिपेयर बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक कॉल 04935360422।
2: टेंशन टेंशन मेरी टेंशन
3: की होया
2: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
3: काका जी टेंशन छड्डो फोन चको कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नु जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा एम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 04105305030
2: या 90 77 93
3: या ईमेल info@vyimmigration.com.au।
2: याद रखो 9077973।
3: VY Immigration and Education Consultant
2: हर कदम तो आड़े नाल।

0: धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: सबसे दमदार और रोमांच कहानी
2: अल्फा प्रोग्राम उसका चुनना है।
1: शानदार एक्शन एंटरटेनर 3 जुलाई को।
2: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
1: आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर।
3: शुरू करो अग्नि परीक्षा
1: 3 जुलाई को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। अल्फा
2: क्या अल्फा से डरेगा?
4: वो वेट कर रहा है तुम्हारा।
5: की चाहिदा? ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा? मिल जुगा, सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशन। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490054596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस .com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए। ओपिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उना दे सुपनेयां दा एक मजबूत कर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ओपिट होम्स अपने 44 वरियां ते तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ओपिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते। सोना चाहिदा?
6: परोसा चाहिदा?
5: क्वालिटी ते बाईबैक वी चाहिदा? चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा? गोल्ड लोन इजी एंड सेफ। रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक। कॉल 0493-536-042।
7: हाँ जी हाँ जी,

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: Ready, set, go! Chadston Ford, Dandenong Road ते तुहानू उड़ीक रहा है। Ford Ranger, Ranger Super Duty, Everest ते सदाबहार Mustang, brand new demo ते quality pre-owned vehicles, trade-in अते finance options भी available। आओ ते अपनी नवी Ford दा test drive करो, business fleet लाई गल करो, vehicle experts Tim Forbes या Corey नाल, radio हांजी दे हवाले नाल पाओ, 3 साल दी free service। Chadston Ford, ready, set, Ford.
3: किचन का स्टाइल डल लगता, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया ZJ स्टोन मेसन, तुहाडे घर नू बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 Collins Road, Melton।
4: किथे वज गई तेरी गड्डी?
5: गड्डी ता ठीक हो जू पर इंश्योरेंस वालियां नू, लीगल वालियां नू एथे प्रदेश विच समझाऊंगा किवें?
4: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंक स्मैश रिपेयर वालियां ने। इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल, वर्क एंड पेंट फ्री, लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383857748 ते। सिंक स्मैश रिपेयर, 8 Grace Way, Revan Hall।

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की हुआ
0: इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
1: काका जी टेंशन छोड़ो फोन चको कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट दे माहिर बैठे ने हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
0: या 90-77-93
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तुहाडे नाल
2: चलदी दा नाम गड्डी आते सुनिया ही होना ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे उनु चलाउन ले ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले याद रखो टायर फोर्स जिना को लॉग बुक सर्विसिंग मैकेनिकल रिपेयर्स इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स यूनिट 1 19-25 सोमर्टन रोड कैंपलफील्ड कॉल 03908-6655 और विजिट tireforce.com.au
3: ਬੈਂਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦਾ
4: ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਲੀਪ ਐਂਡ ਰਿਲੈਕਸ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਰੂਮ ਵਾਲਾ ਗੱਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ
5: ਹੋਰ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਸਲੀਪ ਐਂਡ ਰਿਲੈਕਸ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈੱਡ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਲੀਪ ਐਂਡ ਰਿਲੈਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਲੈਵਟਨ ਨਾਰਥ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨਵਾਂ ਸਟੋਰ ਓਹਨਸ ਰੋਡ ਐਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਮਨਪਸੰਦ ਗੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਬੈੱਡ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਸਲੀਪ ਐਂਡ ਰਿਲੈਕਸ ਵੇਕ ਅਪ ਫੀਲਿੰਗ ਟੋਟਲੀ ਰੈਸਟਡ ਸਰਚ ਅਸ ਆਨਲਾਈਨ ਔਰ ਕਾਲ 0433-465-492

रेडियो हाँ जी 1674 AM, मैं गौतम कपिल, प्रोग्राम इनसाइट रिपोर्ट। ईरान इजराइल ते अमरीका दे विच जंग हुंदी है। अमरीका ते इजराइल एक धिर ने ते ईरान दूसरे पासे दूजी धिर है। इसे साल फरवरी च हुंदा है, तुहानू सब नू इह सब कुछ पता है। इस दे विच की कुछ नहीं पता, इह जंग क्यों कीती गई। कहा तां इह गया कि इजराइल होर परमाणु हथियार नाल बना लवे, बट इज इट ऑल ट्रू, कि यह सब सच हैगा असल दे विच। इस तो पहला अमरीका ते ईरान दे दरम्यान परमाणु जंगबंदी नू लैके या फिर इंज कह लिए कि यूरेनियम एनरिचमेंट नू लैके एक समझौता हो रहा सी, सिरे भी चढ़ गए असी ऑलमोस्ट। उहदी भी टाइमलाइन तुहाडे नाल सांझी करदे हां, पर इस सब दे दरम्यान फिर अचानक क्यों ऐसी लोड़ पै गई। दूसरा यह भी इस मामले दे विच सवाल पैदा हुंदा है कि जदों लड़ाई तीन जणिआं ने शुरू कीती सी तां समझौता दो जणिआं दे विच क्यों होया। यानी कि इजराइल ने सब तो पहला हमला किया, अमरीका ने तो आके साथ ही दिता सी बाद दे विच, ते फिर अमरीका बनाम ईरान लड़ाई किवें बन के रह गई। इजराइल इस मामले दे विच प्रमुख धिर सीगा, बाहर किवें हो गया समझौते तो। तीजा, ये जंग जदों भी अक्सर कितने जंग लड़ी जाती है तो उहदा एक पिछोकड़ हुंदा, उहदी एक पिठभूमि हुंदी है। इस जंग की बैकग्राउंड की सी, कि वाकई सिर्फ और सिर्फ इन्नी कि इजराइल हथियार बनाने लग्या, तो ईरान हथियार बनाने लग्या तो इजराइल बना नहीं देना चाहता, इस करके अटैक करता। ये होर भी कई कारण है, तो फिर ये भी एक वजह है इसकी, एक प्रोग्राम का एक हिस्सा ये भी, ये भी गल करा कि जदों ये जंग एडिया बड़िया दो ताकतों के विच सीगी, एक पासे ईरान तो दूसरे पासे इजराइल तो अमरीका, तो इजराइल तो कदे भी पाकिस्तान की विचोलगी मानदा ना, तो फिर इजराइल नू कि इसे करके उस समझौते तो बाहर रखा गया। पाकिस्तान ने समझौता की विचोलगी किवें करवाई, हुण सारिया परतां जदों खुल रही ने तो उहदी इनसाइट रिपोर्ट तुहाडे तक आपां भी लैके आए हैगे। कोशिश करदे हां, उम्मीद करदे हां कि सारिया जानकारियां तुहाडे तक उदां ही दे सकीए जिद्दां जिस टाइमलाइन दे विच सारिया चीज़ां होईयां हैगियां ने। अज दे इनसाइट रिपोर्ट दे विच तुहाडे तक जिहड़ा असर पिया कि तेल महंगा होया, समान महंगा हो गया, दुनिया च महंगाई आ गई, इस दे पिछे जिम्मेदार कौन है, अमरीका या कोई होर।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: Ready, set, go! Chadston Ford, Dandenong Road ते तुहानू उड़ीक रहा है। Ford Ranger, Ranger Super Duty, Everest ते सदाबहार Mustang, brand new demo ते quality pre-owned vehicles, trade-in अते finance options भी available। आओ ते अपनी नवी Ford दा test drive करो, business plate लाई गल करो, vehicle experts Tim Forbes या कोरी नाल, radio हांजी दे हवाले नाल पाओ, 3 साल दी free service। Chadston Ford, ready, set, Ford।
3: किचन का स्टाइल डल लगता, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया जी जे स्टोन मेसन, पार्टी करनु बनाए एकदम क्लासी। असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ कर पर तुहाड़ी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड, मेल्टन।
4: ਵੈਰਤਮਾਨ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ। ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਦੇਵ ਖਰੋੜ ਸਰਪੰਚ।
5: ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।
4: ਸਰਪੰਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਬਾਲ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ। ਦੇਖੋ ਸਰਪੰਚ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜਲੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਚ।

0: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक माल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार। ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: ਵੈਰਤਮਾਨ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ। ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਦੇ ਖਰੋੜ ਸਰਪੰਚ।
3: ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।
2: ਸਰਪੰਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ। ਦੇਖੋ ਸਰਪੰਚ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜਲੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਚ।
4: किचन का स्टाइल डल लगता, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया जी जे स्टोन मेसन, पार्टी करनो बनाए एकदम क्लासी। असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410 045 555 या आज ही विजिट करो 104 Collins Road, Melton।
5: टेंशन टेंशन निधि।

0: टेंशन
1: की हुआ
0: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुक दे नहीं
1: काका जी टेंशन छोड़ो फोन चको कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स ते माहिर बैठे ने हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
0: या 90-77-93
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: VY Immigration and Education Consultant
0: हर कदम तो आड़े नाल।

0: सोना चाहिदा
1: परोसा चाहिदा है
0: क्वालिटी ते बायबैक वी चाहिदा चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे जिथे बाई कैरेट गोल्ड क्लासी सिल्वर डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत कैश चाहिदा गोल्ड लोन इजी एंड सेफ रिपेयर बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ वी वाजिब रेट ते दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक कॉल 0493-536-042 जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ फैमिली इशू प्रॉपर्टी दा मसला कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने बंसल लॉयर्स तुहाडा भरोसा साडा तजर्बा ते जित अपनी कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au
2: जदों भी कॉमेडी मूवी दी गल हुंदी है ता एक मूवी दा नाम हमेशा आंदा है ओ मूवी जिन्हें सब नु हसा हसा के लोट पोट कीता ओ मूवी जिदी स्टोरी ने ब्रेन रॉट कीता
3: गिप्पी ग्रेवाल बिन्नू टिल्लो सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो वड्डी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4 जिथे एडवोकेट टिल्लो फिर कहेंगे
4: पर टिल्लो ने काला कोट एवें नहीं पाया
2: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर दा स्टेडियम क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं ये लाफ्टर दा फेस्टिवल है।

0: ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ। ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਦੇਵ ਖਰੋੜ ਇਨ ਐਨ ਐਜ ਸਰਪੰਚ।
1: ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।
0: ਸਰਪੰਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਬਾਲ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ। देखो सरपंच 10 जुलाई नू तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च।
2: रेडी सेट गो चेस्टन फोर्ड डेंटिनोंग रोड ते तुहानू उड़ीक रहा है फोर्ड रेंजर, रेंजर सुपर ड्यूटी, एवरेस्ट ते सदाबहार मस्टैंग, ब्रांड न्यू डेमो ते क्वालिटी प्री ओन्ड व्हीकल्स, ट्रेड इन अते फाइनेंस ऑप्शंस वी अवेलेबल। आओ ते अपनी नवी फोर्ड दा टेस्ट ड्राइव करो, बिजनेस प्लेट लाई गल करो व्हीकल एक्सपर्ट्स टिम फोर्ब्स या कोरी नाल। रेडियो हांजी दे हवाले नाल पाओ 3 साल दी फ्री सर्विस। चेस्टन फोर्ड, रेडी सेट फोर्ड।
3: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनू भी दस दे सीक्रेट।
4: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दुध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
3: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट गोल्ड लीफ डेयरी।
5: टेंशन मेरी टेंशन
6: की होया,
5: एथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
6: काका जी टेंशन छड्डो, फोन चक्को, कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू, जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, इम्प्लॉयर स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स, या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
5: या 90-77-97-33
6: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
5: याद रखो 9077-9733।
6: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
5: हर कदम तुहाडे नाल।
7: पेंजी की हाल है पिट दर्द दा?
8: जदों दा स्लीप एंड रिलैक्स दा इंडियन स्टाइल रूम वाला गद्दा खरीदया, सब कुछ ठीक है। थैंक यू एदे बारे दसन लई।
7: और सुनो, हुन स्लीप एंड रिलैक्स हर तरह दे गद्दियां दे नाल बेड भी बनाउंदे ने। स्लीप एंड रिलैक्स दा एक स्टोर लेवेटन नॉर्थ अते दूजा नवा स्टोर ओहंस रोड एपिंग विच भी है। मनपसंद गद्दियां अते स्टोरेज बेड खरीदन लई कॉन्टैक्ट करो। स्लीप एंड रिलैक्स, वेक अप फीलिंग टोटली रेस्टेड। सर्च अस ऑनलाइन और कॉल 0433-465-492।
9: जदों भी कॉमेडी मूवी दी गल हुंदी है तां एक मूवी दा नाम हमेशा आंदा है, ओ मूवी जिन्हें सब नू हसा हसा के लोट पोट कीता।
10: कह रहे हो
9: ओ मूवी जिदी स्टोरी ने ब्रेन रॉट कीता।
10: कह रहे हो
11: गिप्पी ग्रेवाल, बिन्नू टिल्लो, सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो वड्डी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4, जिथे एडवोकेट टिल्लो फिर कहेंगे
12: पर टिल्लो ने काला कोट एवे नहीं पाया।
9: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर दा स्टेडियम, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं, ये लाफ्टर दा फेस्टिवल है।

0: ਹੋਮਸ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਿਰਫ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਹਕ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰ। ਹਾਊਸ ਐਂਡ ਲੈਂਡ ਐਕਸਪਰਟਸ ਓਰਬਿਟ ਹੋਮਸ ਆਪਣੇ 44 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 100% ਫਿਕਸਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਗਾਰੰਟੀ ਵਿਦ ਇਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੀਡਿੰਗ 24-ਮੰਥ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੌਕ। ਅੱਜ ਹੀ ਪਹੁੰਚੋ ਓਰਬਿਟ ਹੋਮਸ ਡਿਸਪਲੇ ਸੈਂਟਰਸ ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਹਰਪਨ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ 04332802052 ਤੇ 04332802052।
1: सबसे दमदार और रोमांच कहानी
2: अल्फा प्रोग्राम उसका चुनना है।
1: शानदार एक्शन एंटरटेनर 3 जुलाई को
2: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
1: आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर।
3: शुरू करो अग्नि परीक्षा
1: 3 जुलाई को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। अल्फा
4: वो वेट कर रहा है तुम्हारा।
5: बलजीत व्याह वास्ते ज्वेलरी देखन तुन्ना ज्वेलर्स चलिए।
6: यार उना दा डेंडी नॉग वाला स्टोर ना बड़ा ही दूर है।
5: ओ हुन टेंशन नहीं, हुन डेंडी नॉग तो इलावा अपने इलाके सेंट एल्बन्स विच तुन्ना ज्वेलर्स स्टोर खुल गया। ओही परोसा ते 30 साल तो वध वरियां दा एक्सपीरियंस। रेडीमेड गोल्ड डायमंड ते सिल्वर ज्वेलरी दे नाल नाल आपा बनवा सकदे हां कस्टमाइज्ड ज्वेलरी भी। तुन्ना ज्वेलर्स 99 मेन रोड वेस्ट सेंट एल्बन्स अते 341 लॉन्सडेल स्ट्रीट डेंडी नॉग। फॉर मोर इन्फो कॉल 04992545 ते।
7: आ किथे वज गई तेरी गड्डी?
8: गड्डी ता ठीक हो जू पर इंश्योरेंस वालिया नू लीगल वालिया नू एथे प्रदेश विच समझाऊंगा किवे?
7: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है। सिंक स्मैश रिपेयर वालिया ने इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 03-8385-7748 ते। सिंक स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, 11 हॉल।

0: सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाईबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।
2: की चाहिदा, ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा, मिल जुगा। सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस, ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490054596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस .com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए।
3: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
4: चलदी दा नाम गड्डी, आते सुनिया ही होना। ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे, उनु चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स, अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां को लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप। टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सुमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 0390866655 और विजिट tirefors.com.au।

0: अज दा विचार अज दी कहानी हर रोज तुसी सुनदे हो शो हांजी मेलबर्न विच तुहाडी डिमांड उते आओ एक बार फिर सुनदे हां इस हफ्ते दी एक बेहतरीन कहानी।
1: रेडियो हांजी 1674 समा हो चुका अज दी कहानी दा अज दे विचार दा। कहिंदे ने एक वारी एक नौजवान जिन्हों पता लगा कि एक उची पहाड़ी की चोटी के उत्ते एक गुरु रहिंदा। ये गुरु किसी नूं बहुता मिलता नहीं, ना ही कदी इस पहाड़ी तो थले उतरिया, तो पहाड़ी के उत्ते चढ़ना भी बड़ा खतरनाक है, कोई विरला ही उहदे कोल पहुँचदा, तो जिहड़ा पहुँचदा उहदा कहिंदे ने जन्म सफला हो जाता। तो अज तक किसी नूं हाले तक उन्हें प्यार दे नाल बुलाया नहीं, किसी दे सिर दे उत्ते अज तक हाथ नहीं रखिया, किसी नूं भी अपना यानी कि शिष्य नहीं हाले तक बनाया। उत्ते लोग जाते जरूर ने, थोड़ा चिर रहिंदे ने वापस आ जाते हैं, क्योंकि कहिंदे ने गुसैला बहुत है, मन दे विच इच्छा नौजवान दे कि मैं जरूर जाना, एक बारी जरूर वेख के आना, मिल के आना। तो कहिंदे ने कि पहाड़ी दे उत्ते जदों तुसीं जांदे हो ते रस्त पानी खाण पीण दा समान तुसीं लैके जांदे हो, क्योंकि उत्ते आश्रम दे विच उस गुरु दे कोल कुछ बहुता खाण पीण दे लई नहीं, जो थल्लों जांदा वा उही खांदा उही वरताया जांदा। सो काफ़ी सारा समान लैके एक दिन सोचा कि मैं भी पहाड़ी चढ़ूंगा, हिम्मत की हौली हौली चढ़ता चढ़ता पहाड़ी चढ़ गया। उत्ते जदों पहुँचदा ते अगे पहलां तो ही मौजूद कुछ होर लोग जिहड़े आए दा स्वागत करदे ने, लिआंदा होया समान उहदा वेखदे ने की लैके आया, खुश हुंदे ने क्योंकि मौसम दे विच हुण तब्दीली होण वाली आ, ते इस पहाड़ी दे उत्ते 46 दिनां दे विच कुछ खास नहीं लभदा। पुछण दे उत्ते कि मैं गुरु जी दे दर्शन कदों कर सकदा, उस फकीर नूं उस महात्मा नूं कदों

0: किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो, आ गया ZJ स्टोन मेसन, फाड़े करनू बनाए एकदम क्लासी, असी बनाने हैं डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल, हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
1: चलदी दा नाम गड्डी, आते सुनिया ही होना, ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे, उनू चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां कोल लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तों ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सोमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 03908-6655 और विजिट fireforce.com.au।
2: टेंशन टेंशन मेरी टेंशन
3: की हुआ
2: अथे, इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार, मुकदे ही नहीं।
3: काका जी टेंशन छड़ो, फोन चको, कॉल करो VY इमिग्रेशन नू, जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स, या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT, अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
2: या 90-77-97-33
3: या ईमेल info@vyimmigration.com.au।
2: याद रखो 9077-9733।
3: VY इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
2: हर कदम तुहाडे नाल।
4: रोज रोज शॉपिंग हुंदिया ने, पता नहीं केड़ा देवता राजी कीता इन्हां ने।
5: सूरज देवता
4: की मतलब?
5: ओ कमलिए, सन करंट वालियां तो ज्यादा इन्हां ने सोलर पैनल लगवाया ता इन्हां दी सेविंग्स वध गई।
4: मैनू नहीं पता, आपां भी सोलर पैनल लगवाना है हुणे।
5: तुसी भी करो बचत ते लगवाओ सोलर पैनल। कॉल सन करंट 0448-06-4494 ते। साला तो बेस्ट सर्विस लई एक ही नाम, सन करंट। देओ रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ $200 दा डिस्काउंट भी।

0: ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस की हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। शर्ता लागू
1: की चाहिदा ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा मिल जुगा सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशन ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना जो स्टडी वीजा स्किल्ड वीजा एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा डामा पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490-054-596 garewalvisasolutions.com.au ते जाओ आओ थोड़ा कोई हल करिए
2: जे तुसी बीमार हो ता एआई कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ फैमिली इशू प्रॉपर्टी दा मसला कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने बंसल लॉयर्स तुहाडा भरोसा साडा तजर्बा ते जित अपनी कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au

0: होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लिए बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252
1: ते। सबसे दमदार और रोमांचक कहानी
2: अल्फा प्रोग्राम उसका चुनौती है।
1: शानदार एक्शन एंटरटेनर 3 जुलाई को
2: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
1: आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर।
3: शुरू करो अग्नि परीक्षा
1: 3 जुलाई को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। अल्फा
4: वेट कर रहा है तुम्हारा।
0: सोना चाहिदा,
5: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाईबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे जिथे 22 कैरेट गोल्ड क्लासी सिल्वर डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक। कॉल 0493-536-042।
6: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
7: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
6: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
7: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 ते या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: लो फेड हल्की जी दाढ़ी रखदा, क्या बात
1: है।
0: करण औजला इज द बेस्ट ड्रेस्ड पंजाबी आर्टिस्ट बाय फार। दिलजीत दे पॉइंट सीगे पहला मेरे हिसाब ना, मेरी नजरां च, पर करण औजला बहुत पार कर गया। टेल मी वन थिंग, अच्छा टेल मी वन थिंग, जे वो स्टैंड आउट करांदी करण नु बाकियां नालों, इन द वे ही, हां इन द वे ही कैरी हिमसेल्फ।
1: यार सब तो पहला तो वेखो, एक हर एक बंदे दा एक ओरा हुंदा।
0: यस
1: ठीक है, सब तो वड्डी ते दी ए चीज है
0: ओरा। एंड ओरा कित्थों आंदा?
1: पर्सनैलिटी चो।
0: पर्सनैलिटी इदां दे ओरा वाले किदां बनदी आ?
1: स्ट्रगल चो।
0: स्ट्रगल तो है पर कई स्ट्रगल च निचुड़ भी जांदे आ। सो एकदम ठीक, ये पता कित्थों आंदा सब? ए आंदा सेल्फ इमेज, सेल्फ वर्थ, सेल्फ कॉन्फिडेंस। किन्ने लोगों ने किन्ना कुछ किया होना करण नूं, है ना, जो स्टार्ट करन लगा होना अपना करियर, फिर जो मूसे वाले दे नाल बीफ चलता पिया सीगा करण औजला दा, नो बड़ी केयर्ड अबाउट हिम मच, है ना, कोई बहुत ही इन्नी ज़्यादा गलबात सीगी नहीं। पर टाइम दे नाल नाल ही लॉस्ट, ही फाउंड, सॉरी, हिज वॉइस। द वॉइस की है अपनी पर्सनैलिटी,
1: अपना करैक्टर बिल्ड किया वा, एक इमेज तो भी वध के होंदा ही ओ चीज़।
0: यस, असी ना इत्थे ही मात खाने, असी अपने आप नूं ना, क्योंकि नैगेटिव इमोशंस दे अंदर इन्नी ज़्यादा पकड़ हुंदी है, इन्ना मैगनेटिज्म हुंदा ना, आपां कोई चीज़ कदी 10 साल पहले भी करन लगे, गलती करके होवांगे ना, सानू हमेशा साडी इमेज दे अंदर ना हिस्सा बन जाऊगी, यार मेरे तो नहीं हुंदा,
1: इदां ही मैं कीते ही ट्राई पर होया नहीं,
0: है ना,
1: जदकि तुहानूं होणा ही नहीं।
0: हाँ, जदकि आपां किन्नियां चीज़ां बैटर करते रहने थ्रू आउट लाइफ, सानू पता भी नहीं लगता, है ना। सैल्फ इमेज ये इको कली चीज़ है, तो सब तो जरूरी चीज़ है इन माए नज़र,
1: योर बुक्स,
0: इन माए बुक्स, कि तुसी बहुत समा लगता, बहुत हिम्मत, बहुत टाइम लगता, बहुत मैन्यूपुलेशन लगती है अपने आप नू यह दसन लिए कि मैं बहुत वधिया।
1: हाँ, सब तो औखा काम ही जान,
0: सब तो मेरे तो बैटर कोई नहीं, तो जो ये चीज़ आती है ना थोड़े अंदर, तुहाडा मन मन जांदा है चीज़ नू, है ना, फिर ये जिन्नियां चीज़ां आपां पहले 35-40 मिनट च डिस्कस कीतियां ना, ये सारियां सेकेंडरी हो जांदियां, क्योंकि वो थोड़ा फिर बॉडी लैंगुएज, थोड़ा हाव भाव, थोड़ा उठन बैठन का तरीका ना, वो वाकई इट्स लाइक अ चीता, इट्स लाइक अ लाइन, है ना। कहिंदे वाई इज लाइन किंग ऑफ द जंगल, ना ओहदे कोल स्पीड है उदां दी, है ना, ना ओहदी बॉडी हाथी वर्गी है, जो कह लीए ना कि बड़ा ह्यूज है, ना चीते वर्गी ओहदी स्पीड नहीं है। तुसीं किसी भी एनिमल दे नाल ओहनू कर लो, की कहिंदे आ, कंपेयर, ते है ना, ते ओह थोड़ा जिहा लैग बिहाइंड करदा, पर कहिंदे शेर दी सब तो ज़्यादा घैंट गलबात पता की है, ओहदा ओरा, ते ओहदा ओरा पता कित्थों आंदा, कि ओह चपट्टा मारन वाला ओरा ओहदा, जंगल सारे जानवर आपस किदा रेंदे कि जंगल का राजा तो असी क्या होया, पर ह्यूमन माइंड, ह्यूमन साइकोलॉजी क्यों राजा कहती है, क्योंकि सानू राजा वर्गा लगता कि इन्नी सारी इम्परफेक्शंस ने जो तेरे अंदर भी है, जो मेरे अंदर है, जो साडे सुनने वाले दे अंदर भी है, पर ओहदा सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड द वे ही कैरी हिमसेल्फ।
1: जी बिल्कुल, जरूरी है ये चीज़ कैरी करनी, पर अपने इमोशंस भी कंट्रोल करने नाल दी नाल बहुत जरूरी है, क्योंकि मान लो तुम कितने भी हो, डजंट मैटर कर रहे हो, जे को कोई काम करवा रहे हो, हर एक थान के उत्ते बंदे दे, मान लो किसी ने कोई गल कहती, जो तुम कोई गल सुन ली, जो तुम कोई किसी गल कहती, तो उत्थे जिहड़ा अपने आप नू संभालना, मान लो किसी ने उच्ची गल कहती आ, उहदे उत्ते तुम कंट्रोल करना, उहनू किदां हैंडल करना वा, जे किसी ने ज्यादा कोई मान लो तुहानू खुशी देती, तो उत्थे अपने आप नू तुसीं ओवर नहीं करना, उहनू अपने अंदर शक्ति होनी चाहीदी तुहाडी, उहनू सांभण दी, है ना, तुसीं उहनू रख सको अपने अंदर, सांभ सको, गुस्सा आया तो उहनू सांभ सको, ये चीजा बहुत ज्यादा मैटर करदी।
0: जिन्ना कि निर्गुण बंदा इस लिहाज ना बन सकदा ना कि चंगा हो रहा बुरा हो रहा थोड़े नाल, या फिर बहुत खुशी आ रही है या बहुत गुस्सा आ रहा, फिर भी तुसीं अपना डिमीनर एक बना के रख पाने हो, ओहदे नाल दी कोई रीस नहीं। यू आर राइट उस्ताद जी, यू आर राइट
1: जी, बिल्कुल, अपना तो यही है, वेखो फंडा भी कीप लर्निंग, है ना,
0: कीप लर्निंग, एहदे नाल दी कोई रीस नहीं,
1: अपने आप नूं जिहड़ा तुसीं मतलब सही राह ते चलो, पर नाल

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की हुआ
0: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
1: काका जी टेंशन छोड़ो फोन चको कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-503-503
2: या 90-77-97-33
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
2: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
2: हर कदम तुहाडे नाल
3: सोना चाहिदा
4: भरोसा चाहिदा
3: क्वालिटी ते बायबैक वी चाहिदा चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे जिथे 22 कैरेट गोल्ड क्लासी सिल्वर डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत कैश चाहिदा गोल्ड लोन इजी एंड सेफ रिपेयर बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ वी वाजिब रेट ते दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक कॉल 0493-536-042 ऑर्बिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उना दे सपने आदा एक मजबूत कर हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वरियां ते तजुर्बे नाल थानु दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नु 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते
5: हां जी हां जी ओए हां जी हां जी
6: हां जी रेडियो

0: ਚੱਲਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੱਡੀ ਆਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਲ ਮੇਜਰ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਦੇ ਟਾਇਰਸ ਅਲੋਏ ਵੀਲਸ ਲਈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਟਾਇਰ ਫੋਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਸਰਵਿਸਿੰਗ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਰਿਪੇਅਰਸ, ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਰੀਪੇਮੈਂਟਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਲਵੇਸ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ। ਟਾਇਰ ਫੋਰਸ, ਯੂਨਿਟ 1, 19-25 ਸੁਮਾਟਨ ਰੋਡ, ਕੈਂਪਲਫੀਲਡ। ਕਾਲ 03908-6655 ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟ tireforce.com.au।
1: ready set go Chadston Ford, Dandenong road te tuhanu udik reya hai। Ford Ranger, Ranger Super Duty, Everest te Sadabahar Mustang, brand new demo te quality pre-owned vehicles, trade in ate finance options we available। aao te apni navi Ford da test drive karo, business fleet lai gal karo, vehicle experts Tim Forbes ya Corey naal, radio hanji de hawale naal pao 3 saal di free service। Chadston Ford, ready set Ford।
2: Benji ki haal hai pith dard da,
3: jadon da sleep and relax da Indian style room wala gadda khareedya, sab kuch theek hai। Thank you ede bare dassan layi।
4: Aur suno, hun sleep and relax har tarah de gaddiyan de naal bed vi banaunde ne। Sleep and relax da ik store Leverton North ate dooja nava store Ohans Road Epping vich vi hai। Man pasand gaddiyan ate storage bed khareedan layi contact karo। Sleep and relax, wake up feeling totally rested। Search us online or call 04334654 92।
5: सोना चाहिदा,
6: भरोसा चाहिदा,
5: क्वालिटी ते बाईबैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स, स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स, 310/2 मेन स्ट्रीट, पॉइंट कुक। कॉल 04935360042।
7: ओपिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं, बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उनां दे सुपनियां दा एक मजबूत कर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ओपिट होम्स अपने 44 वर्यां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24-month प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ओपिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 04332802552।

ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।

0: टेंशन टेंशन मेरी टेंशन
1: की होया
0: थे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
1: काका जी टेंशन छड़ो, फोन चको, कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, इम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
0: या 90-77-97-33
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
0: याद रखो 9077-9733।
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
0: हर कदम तुहाडे नाल।
2: चलदी दा नाम गड्डी आते सुनिया ही होना, ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे उनु चलाउन ले ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां कोल लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सोमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 03908-6655 और विजिट tireforce.com.au।

0: रोज रोज शॉपिंग हुंदिया ने पता नहीं केड़ा देवता राजी कीता इन्हां ने।
1: सूरज देवता
0: की मतलब?
1: ओ कमलिए, सन करंट वालियां तो जद्दा इन्हां ने सोलर पैनल लगवाया ता इन्हां दी सेविंग्स वध गई।
0: मैनू नहीं पता, आपा भी सोलर पैनल लगवाना है हुणे।
1: तुसी भी करो बचत ते लगवाओ सोलर पैनल। कॉल सन करंट 0448-066-494 ते। साला तो बेस्ट सर्विस लई एक ही नाम सन करंट। देओ रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ $200 दा डिस्काउंट भी।
2: किचन दा स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया जी जे स्टोन मेसन, पाडे घर नु बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन। ओबिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उनां दे सुपने आदा एक मजबूत कर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ओबिट होम्स अपने 44 वर्यां दे तजुर्बे नाल थानु दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ओबिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नो 0433-280-252 ते 04332802522 ते।

कुछ यहोजा गीत जिन्हों तुसी अपने दिल दे विच जगह दिती है ते कुछ नवीं गल्लां क्योंकि जिहड़ी आर्टिस्ट की होंद है जिहड़ी मनमोहन वारस की होंद है कमल हीर की होंद है अपने आप च कुछ नहीं हैगी सिर्फ गीतां करके है जिहड़े गीत ने असीं गाए हुए उन्हां करके साडी पहचान है उही अपनी पहचान थोड़े रूबरू करन जा रहे हैं आज शुरू करिए फिर आओ जी।

0: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 पे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: Ready, set, go! Chadston Ford, Dandenong Road ते तुहानू उड़ीक रहा है। Ford Ranger, Ranger Super Duty, Everest ते सदाबहार Mustang, brand new demo ते quality pre-owned vehicles, trade-in अते finance options भी available। आओ ते अपनी नवी Ford दा test drive करो, business fleet लाई गल करो, vehicle experts, Tim Forbes या कोरी नाल, Radio हांजी दे हवाले नाल पाओ, 3 साल दी free service। Chadston Ford, ready, set,
3: Ford. 0383-85-7748।

0: Burada. Yani burada. Burada Amazon.
1: जैस्मीन बाजवा गुरबाज सिंह एंड सरबजीत देखो सरपंच 10 जुलाई नुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च
2: वाओ तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है मेनू भी दस दे सीक्रेट
3: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार ना ता इस विच ऑयल ना ही कोई कलर हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है
2: तुसे भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड टी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो विजिट goldleafdairy.com।

0: अल्फा
1: सबसे दमदार और रोमांचक कहानी।
0: अल्फा प्रोग्राम उसका चुनून है।
1: शानदार एक्शन एंटरटेनर 3 जुलाई को।
0: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
1: आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर।
2: शुरू करो अग्नि परीक्षा
1: 3 जुलाई को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। अल्फा
0: इंडिया अल्फा से डरेगा।
3: वो वेट कर रहे हैं तुम्हारा।
4: बलजीत व्याह वास्ते ज्वेलरी देखन तुन्ना ज्वेलर्स चलिए।
5: यार उना दा डेंडी नॉग वाला स्टोर ना बड़ा ही दूर है।
4: ओ हुन टेंशन नहीं, हुन डेंडी नॉग तो इलावा अपने इलाके सेंट एल्बन्स विच तुन्ना ज्वेलर्स स्टोर खुल गया। ओही परोसा ते 30 साल तो वध वरियां दा एक्सपीरियंस। रेडीमेड गोल्ड डायमंड ते सिल्वर ज्वेलरी दे नाल नाल आपा बनवा सकदे हां कस्टमाइज्ड ज्वेलरी भी। तुन्ना ज्वेलर्स 99 मेन रोड वेस्ट सेंट एल्बन्स अते 341 लॉन्सडेल स्ट्रीट डेंडी नॉग। फॉर मोर इन्फो कॉल 0499 25 45 ते।

0: टेंशन टेंशन मेरी टेंशन
1: की हुआ
0: इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
1: काका जी टेंशन छोड़ो, फोन चको, कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, इम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
0: या 90-77-93
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
0: हर कदम तुहाडे नाल।
2: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैण भरा नूं उनां दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले दालां ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते लै सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम वी, नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानूं वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।

0: ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस की हर लोड ले, याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। शर्ता लागू।
1: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुग निना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले, दाला, ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट से ले सकते हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी, नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार, मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुग निना विच।

0: टेंशन टेंशन मेरी टेंशन
1: की होया
0: थे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
1: काका जी टेंशन छोड़ो फोन चको कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
0: या 90-77-97-33
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तुहाडे नाल।

0: ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस की हर लोड ले, याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। इंश्योरेंस शर्ता लागू।
1: रोज रोज शॉपिंग हुंदिया ने, पता नहीं केड़ा देवता राजी कीता इन्हां ने।
2: सूरज देवता
1: की मतलब?
2: ओ कमलिए, सन करंट वालियां तो ज्यादा इन्हां ने सोलर पैनल लगवाया ता इन्हां दी सेविंग्स वध गई।
1: मैनू नहीं पता, आपा भी सोलर पैनल लगवाना है हुणे।
2: तुसी भी करो बचत ते लगवाओ सोलर पैनल। कॉल सन करंट 0448-066-494 ते। सालां तो बेस्ट सर्विस लई एक ही नाम सन करंट। देओ रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ $200 दा डिस्काउंट भी।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हां जी,

अकाल मूर्त अजूनी सैपं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। सोचै सोच न होवी जे सोची लहवार, चुपै चुप न होवी जे लाय रहा लिवतार। भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार, सह सियान पाला खोए ता एक न चले नाल। किव सच्यारा होई है किव कूड़ै टुटे पाल, हुकुम रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहा जाई, हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वड्याई। हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है, एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पुआई है।

ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए। पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावे दरगे मान पंचे सोहे दर राजान पंचा का गुर एक त्यान। जे को कह करे विचार करते कह करने नाही सुमार। तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत। जे को बुझै होवै सच्यार तौलै उपर केता पार। धरती होर प्रै होर होर तिस्ते पार तलै कमन जोर। जी जा

एक बार जो तुद पावे साई पली का, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह

जो तुद पावै साई फली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूर्ख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवट हत्या कुमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कुड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेच मल पाख खाए।

जो तुद पावै साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कै सिर पार होए, अखरी नाम अखरी सालाह।

पाए जाए, ए अंत न जाने कोए, बहुता कहिए बहुता होए, वड्डा साहेब ऊंचा थाओ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ, एवड ऊंचा होवे कोए, तिस ऊंचे को जाने सोए, जेवड आप जाने आप, नानक नदरी करमी दात, बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तुमाए, केते मंगे जोत अपार, केत्या गंत नहीं विचार, केते खप टुटे वेकार, केते लैले मुकर पाहे, केते मूर्ख खाई खाए, केतिया दुख भूख सदमार, ए भेदात तेरी दातार, बंद खलासी पाने होए, और आख न सके कोए, जे को खाएक आखन पाए, ओ जाने

तीरे सुनियार एरन मत वेद हथियार पौ खला अगन तपताओ पांडा पाओ अमृत तित काल करिए शब्द सची टक।

अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे प्रभंगी परमाते समस्ति प्रभूते कलंक विनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजे सवरंग परम रूपे नमो जोग जोगे सवरंग परम सिद्धे नमो राज राजे सवरंग परम बिरदे नमो शस्त्रपाने नमो।

प्रेत अप्रेत देवे सुतर में नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साहंग नमो पूपे नमो दान दाने नमो मान मानंग नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नानंग नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्ट नमो तंत्र तंत्रंग सदा सच्चिदानंद सर्व प्रणासी अनूपे अरूपे सुमस्तल निवासी सदा सिद्ध दाबुद दाभिर्द करता अधो उर्द अर्दंग अग उग हरता परंग परम परमेश्वरंग प्रोच पालंग सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयारंग अछेती अपेदी अनामंग अकामंग समस्तो पराजी समस्तस्तामंग तेरा जोर चातुरी छंद जलय हैं थलय हैं अभीत हैं अभय हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अवेश हैं प्रियंग पुरा छंद गादे अबादे आनंदी स्वरूपे नमो सब माने समस्ति निदाने नमस्त्वं निनाथे नमस्त्वं परमाते नमस्त्वं अगंजे नमस्त्वं अभंजे नमस्त्वं अकाले नमस्त्वं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साहसाय नमो माय माय नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोगे नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो सर्वतानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व मंजंत्रंग नमो सर्व दिशंग नमो सर्वोत्कृष्ट नमो सर्व रंगे त्रिभंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखजे अभजे समस्तंग प्रसजे कृपालंग स्वरूपे कुकर्मंग पनासी सदा सर्वदारिद सिद्धंग निवासी चार परिचान तो प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे आलख जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग अलख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग भुक्ता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रुहाल छंद तो प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त अजोन पुरख अपार सर्व मंत्र मान देव अभेद आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल जत तत्र विराज ही अब दूत रूप रसाल नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूर्त अजोन आद से देश अरना पेश जाकर रूप रेख न राग जात्र तत्र दिशा विशा हुए फैलो न राग नाम काम बहिन पेख ताम हो न जाए सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मानताए एक मूर्त अनेक दर्शन किन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव न जानी जय बेद हरक तेव रूप रंग न जात पासो जानी कह जेव तात मात न जात जाकर जनम मर्म ही चक्र बकर फिरे चतर चक मान ही पुरती लोक चौदह के बिखे जग जाप ही जय जाप आद देव अनाद मूर्त थाप्यो सब जय थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रस्त्यो सुजंबव गण पंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म ताम सो परम रहत अपूत अलख अपेक अंग राग न रंग जाके जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुकदाय काम आव रूप अमीक अनुस्तुत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत अंगहीन अभांग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपाल सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपे सर्व शास्त्र जानी जय रूप रंग रेख परम वेद पुराण जाके नेत पागत नेत कोट सिमृत पुराण शास्त्र न आवे ही वो चित मदभार छंद तो प्रसाद गुण गानुदार मैं माया पार आसान अभंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस्दिन अना

कालान कान अनुभूत अंग अभावंगत में तो पार गुण गण उदार मुन गण बरनाम निर्भय निरकाम अद्भुत प्रचंड मित गत अखंड आलक्ष आदिष्टे तरम सर्वां वर्णांडीय अंडंड भांडिय चाचरे चंतो प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंकरियम निर्नामे अकामे यंग प्रिया छंद चतर चक्र कर्ता चतर चक्र हर्ता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मानिए चतर चक्र जानिए चाचरी छंद न सत्रे न मित्रे न परमंग न पित्रे न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाये न चित्रे न मित्रे पर है पवित्र प्रतिशय अधीरशय अदृशय अकृशय भगवती छंतो प्रसाद कथते के आछे जदेश के आभे जुमेश के आगा जिकर्म के आभा

जगतं कृति है कि छत्रं छत्री है कि ब्रह्मं स्वरूपे के अनुपव अनुपे के आद अदेव है कि आप अभेव है कि चक्रं बहीन है कि एक अधीन है कि रोजी रजा कह रही में रहा कह के पाक बेअब है कि गैबिल गैब है कि अफल गुना है कि साहल सुना है कि कारण कुनंद है कि रोजी दहंद है कि राज ग्रहीम है कि कर्मं करीम है कि सर्वं कली है कि सर्वं दली है के सर्वत्र मानिए के सर्वत्र दानिए के सर्वत्र गौणे के सर्वत्र पौणे के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पैसे के सर्वत्र राजे के सर्वत्र साजे के सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने के सर्वत्र जाओ के सर्वत्र पाओ के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पैसे के सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भोग है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मानी है सदैव प्रदानी है के सर्वत्र जापी है के सर्वत्र थापी है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं कलीम है के परमंग फहीम है के अकाल अलाम है के साहिब कलाम है के हुसन वजू है तमाम रजू है हमेशा सलाम सलीख में गनी बुल शिकस्ते गरीब उल परस्ते मुलंदर मुकाने जमीन उल जुमाने तमीजुल तमामे रजूअल निदाने हरीफुल अजीमे रजाय यकीने अनेकल तरंग है अभेद है अभंग है अजीजुल निवाज है गनी मुल खिराज है निरका स्वरूप है त्रिमुक्त भूत है प्रभगत प्रभा है सो जुग सुदा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्तल सलाम है सदैवल कलाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओम आद रूप है अनाद स्वरूप अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिका में त्रिभर्गन त्रिभादे अगजे अगाधे सुभंग स्वरूपागे सो सर्वान रागे त्रिपुगत स्वरूप है अच्छे जय छूत है कि नरकम परनाश है पृथ्वी प्रवास है निरकत प्रवाह है सदैव सदा है बेपुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है निरकत सदा है बेपुगत प्रवाह है अनुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है चातरी छंद अभंग है अनंग है अभेक है अलेख है अभर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अधूत है अनास है उदास है अधंध है अभंध है अभक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है निचिंत है सुनित है अलिख है अधिख है अलेख है अभेक है अडा है अगा है असंभ है अभंग है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजात है चारपड़ चंतो प्रसाद सर्वहंता सर्वगंता सर्वख्याता सर्वज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रुआल चंद तो प्रसाद नमो नरगनासे सदैव प्रगासे अनंग स्वरूपे अभंगम भूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध भूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते निर्साक शरीक है अमितो अमेक है सदैव परवा है अजय है अजा है भागवती छंद तो प्रसाद के जाहिर जहूर है हाजर हजूर है मेशल सलाम है समस्तल कलाम है के साहिब दिमाग है के उसन चराग है के कामल करीम है के राज करीम है के रोजी दहंद है के राज करहंद है करीमुल कुमाल है के हुसन जमाल है गनीमुल खराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल शकन है हिरासल फकन है कलंकं परनास है समस्तल निवास है अगंजल गनीम है रजायक रहीम है समस्तल जुबा है के साहिब के राह है के नरकम परनास है बिस्तल निवास है के सर्वर गवन है के हमेशल रवन है तमाम तमीज है समस्त अधीश है परम परम ईस है समस्त अधीश है अदेशल अलेख है अभेशल अभेक है जमीन जुमा है अमी कुमा है करीमल कुमाल है के जुर जुमाल है के अचलं प्रकाश है के अमितो सुभाष है के अजब स्वरूप है के अमितो प्रभूत है के अमितो प्रसा है के आत्म प्रभा है के अचलं अनंग है के अमितो अभंग है मद भार छंद तो प्रसाद मन मन प्रणाम गुण गण मुदाम हर बर अगंज हर नर प्रभंज अन गण प्रणाम मन मन सुनाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनभव अनास मन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जलथन मुदाम।
अनछिज अंग आसान अभंग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिस विस अभंड जल थल महंत दिस विस बेअंत

अंठन अबार आडीठ तरम अत टीठ करम अन बरन अनंत दाता मंत हर बोल मना शांतो प्रसाद करना ले आयार काले है कल खंडर है मैं मंडर है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व वारण है धृत के तरण है जग के करण है मनमानी है जग जानिय है सर्वंकार है सर्वंकार है सर्वपाशी है सर्वनाशी है करनाकर है विश्वम्भर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कलखंडस है परते पर है करनाकर है अजपाजप है अतपातव है अकृताकृता है अमृतामृता है अमृतामृता है करनाकृत है अकृताकृता है तरनी तृत है अमृतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृता है अजबाकृत है अमृतामृत है नर नायक है कलकायक है विश्वम्बर है करुणालय है निर्मनायक है सरुपायक है पाव पंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जब जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ताकर है हरताहर है परमात्मा है सर्वात्मा है आत्म बस है जस के जस है पुजांग पुरा छंद नमो सूर सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बिंदे नमो बीज बीजे नमो राज संताम संक्षात रूपे नमो परंग ततंग अतंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो त्यान त्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्र अनादंगूते कलंकार रूपे अकलंकार लंके नमो आसे आसे नमो बांग बंके अभंगी स्वरूपे अनंगी नामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी कामे एक अश्री छंद अजय अलय अभय अभय अभू अजू अनाश अकाश अगंज भंज अलख पख अकाल दयाल अलेख अभेक अनाम अकाम अगा अडा अनाथे परमाथे अजूनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अभर्मंग अगजे अलेखे पुयांग प्रजा छंद नमस्तर प्रणामे सुमस्तर प्रनासे अगंजन अनामे सुमस्तर निवासे निर्कामंग बभूते सुमस्तं स्वरूपे कुकर्मंग प्रनासी सोतर्मंग प्रभूते सदा सचिदानंद सतरंग प्रनासी करीमल कुरंदा सुमस्तल निवासी अजायब बभूते गजायब गनी में हरियंग करियंग करीम रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुयम्बम सुमंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते तो प्रसाद सोइए सराव समूह सिदान के देख फिरो करजोग जति के सूर सुरार दन शुद्ध सुधायक सन समूह अवनिवृति के सारी देश को देख रहे मत को न देखत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूँ ते एक रति बिन एक रति के माते में तंग जरे जर संग अनूपतंग सुरंग सुवारे कोर तुरंग कुरंग से कुद पौन के गौन कुजात निवारे पारी प्रजान कपूर बली बन्याव सीत न जात बिचारे इते पै तो कांपे पुपुत अंधकुना के पाए बिदारे जीत बिरे सब दे दिशान को बार जित टोल मृदंग निगारे गुजत गुण गजान के सुंदर हंसत है हजराज हजारे पूत पवेख पवान के पुपुत कौन गने नी जात बिचारे श्री पत श्री भगवान पजे बिन अंत को अंत के ताम सिधारे तीर्थ नाम दया दम दान सो संयम नेम अनेक बसिख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन समान समान को पिख है पौन हार जति जत हर सब विचार हजार को देख है श्री भगवान पजे बिन पूपत एक रति बिन एक न लिख है शुद्ध सुबा दुरंत दुबा सुसाज सनह दुर्जा

0: साच कहो सुन लियो सबै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो कहूं ले पायन पूतरियो सिर कहूं लिंग ले ढलकायो कहूं लिखियो हर अवाची दिशा में कहूं पुछा को शीस नवायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूड़ क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो कूड़ क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो।
1: कवियो बाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दर अच्छा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुट सबे तुम कावो आप हाथ दे मोय बचावो सुखी वसे मोरो परवारा सेवक सिख सबे करतारा मोर इच्छा नंज कर दे करिये सब बैरन को आज संगरिये पूर्ण होए हमारी आशा और भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याओ जो बर जाओ सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारे तारिये चुन चुन सत्र हमारे मारिये आप हाथ दे मुझे उबरिया मरण काल का त्रास नवरिया पूजो सदा हमारे पच्छा सिरिया तुझो करियो रच्छा राख।

काल पाए शिवजु अवतरा, काल पाए कर विषण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जमन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा ज्योतियो, जमन काल सब लोक सुवारा, नमस्कार है ताए हमारा, जमन काल सब जगत बनायो, देव दैत जचन उपजायो, आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा, नमस्कार किसी को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सुवारी, शिवकन को शिवगुण सुख दियो, सतन को पलमो बद कियो, काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत, टीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतम दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पहचाने, काट काट के पट पट की जाने, जब उदकर करा कर तारा, प्रजा तरत तब दे अपारा, जब आकर्ष करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ, जेते बदन सृष्ट सब थारे, आप अपनी बूझ उचारे, तुम सब ही तेरे निरालम, जानत बेद भेद अल आलम, निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूड उच

महादेव को कह सदा शिव, निरंकार का चिंतन पेव, आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्ण तिन पिन तोय तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, कहब सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग प्यो राव कई पूपा, अंडज जे राज से तजकिनी, उत्पुज खान बहु रजदीनी, कहो फू राजा है बैठा, कहो सिमट पयो शंकर कैठा, सगरी सृष्टि दिखाए चंभव, आज जुगा स्वरूप सुजंभव, आवरक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रन काता, जे आज तो तब सरनी परे, तिन के दुष्ट दुखद है मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिन के तुम संकट सब तारे, जो कल को एक बार तिहाय है, ताके काल निकट नहीं आए है, रच्छा होए ता सब काला, दुष्ट अरिष्ट तरे तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहे न हर हो।

तही गुणी संसार परम सुत्ता सुत्या रहन विहानी गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वसिया बोले अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए जिसनू अंत दिन हर

माया अगन सा विको जई करता खेल लचाया जांत सपाना ता जमया परिवार भला पाया लिव छुड़की लगी तरसना माया अमर वरताया ए माया जित हर विसरै मोह उपजै पौ दूजा लाया कह नानक

वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग चवर शतर तख्तां दे मालक वालिए कुल आलम राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान साहिब सतगुरु धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र मुकद्दस पवित्र गोद विच प्रेम सहित गुरुद्वारा मंजी साहिब दीवान हाल विखे उपस्थित सतसंगी जनो धन सतगुरु श्री गुरु रामदास महाराज जी दे पावन पवित्र अस्थान सचखंड श्री हरिमंदर साहिब दरबार साहिब तो अमृत वेले साहिब जी ने प्रकाशमान रूप हो करके जो पावन पवित्र श्री मुख वाक बख्शिश कीता है साहिब जी दे आए पावन शब्द पावन मुख वाक जी की कथा विचार प्रेम सहित करने हित सर्वन करने हित गुरु महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठे हां। करा अंदर देशां विदेशां विच प्रेम सहित बैठ करके सुरत बिरत करके धन गुरु रामदास महाराज जी दे पावन पवित्र चरण कमलां विच हाजरी लगवा रहे हो। सतगुरु श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी दी पावन पवित्र मुबारक रसना तो उचारण कीते हुए अज दे शब्द हन। अज दी कथा विचार संगत जी जो मजमून है एक पावन पवित्र श्री मुख वाक और इन्हां पावन स्थानां दी जो मर्यादा है कि चल रही लड़ीवार सतगुरु महाराज जी दे शब्दां दी कथा विचार और तीसरा संगत जी जो अज दा दिन है आप जी ने इथे नमस्कार करन तो पहला बार जो बोर्ड लगे हुए हन कि 4 जुलाई 1955 नू भारत सरकार दे वल्लों जो सतगुरु महाराज जी दे पावन पवित्र अस्थान ते हमला कीता गया उदी याद दे अंदर संगत जी अज इन्हां अस्थानां ते श्री अखंड पाठ साहिब दे भोग भी पैणे हन। जदों दरबार साहिब ते हमले दी आपां गल करने हां तीसरा घल्लूकारा जून 84 दा अपनी सिमरती दे विच है तथा रहना भी चाहिए भुलना नहीं चाहिए पर आप जी नू ज्ञात भी होवेगा कि एक उस तो पहला भी 1955 विच भी एक हमला सतगुरु श्री गुरु रामदास महाराज जी दे पावन पवित्र जिस अस्थान ते तुसी बैठे हो इस अस्थान ते भी होया सी। 4 जुलाई 3 तथा 4 जुलाई दी रात नू भरिया होया सी मंजी साहिब दीवान हाल संगता इस स्थान ते सन और दरवाजा बंद करके टीयर गैस दे गोले छड़े बैठी हुई संगत दे ऊपर वे हिताशा जिहड़ी कुटमार हुई ओ भी जिहड़ा संगत जी अज दिन है उस संबंध विच भी आप संगत जी दे नाल विचारां दी सांझ पाउणी है परंतु सब तो पहला जो अस्थानां दी मर्यादा है गुर शब्द विचार पावन श्री मुख वाक जी की पहला कथा विचार आपां करांगे उपरंत संगत जी इस दिन दे ऊपर भी आपां पंछी झात जरूर लावांगे। सो करो मन बिरतिया संगत जी एकागर हाजरीन संगत सतगुरु महाराज धन गुरु रामदास महाराज जी दे पावन पवित्र चरण कमलां दा ध्यान धरदियां होया प्रेम सहित फतेह दी सांझ पाओ जी कोई पेरसना वांझी ना रहे फतेह परवानो गज के आखो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र बाणी विच सतगुरु महाराज सचे पातशाह जी दे कुछ जिहड़े पावन शब्द हन ओ इतिहासक शब्द भी हैं। सतगुरु महाराज धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज सचे पातशाह जी ने अपने सपुत्र साहिब श्री गुरु हरगोबिंद महाराज जदो नरोए हुए हन सतगुरु जी दे सपुत्र बाल हरगोबिंद महाराज जी दे उपर श्री गुरु हरगोबिंद महाराज जी दे तन दे उपर जदो ताप ने खेद कीता लोकां ने आन करके बड़िया क्या महाराज फलानी थां ते अमकी थां ते चलिए महाराज जी ने सारियां नूं सेध दित्ती नहीं पाई वड्डियां गुरां दे अस्थान तो बिना किते होर नहीं ते जदो श्री गुरु हरगोबिंद महाराज ताप गवाया गुरपुरे जदो तन तो ताप उतर गया सतगुरु महाराज जी ने जो अज पावन शब्द आया है संगत जी ये परमेश्वर दे शुकराने दा शब्द महाराज जी ने उचारिया है। भावां सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद महाराज जी दी बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच नहीं पर सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद महाराज जी दा नाम बाणी विच कई वार आपां सरवण करने हां। जिवें सतगुरु महाराज जी ने पावन पवित्र मुबारक बचन हरगोबिंद प्रभ राखिया जन नानक साच सुपाखिया बाणी विच कई वार उन्हां दा नाम सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद महाराज जी दा नाम आया है। सो इस पावन पवित्र शब्द दी उथानका सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव महाराज वड्डियां गुरां दा परमेश्वर दा शुकराना करदिआं होइआं इह शब्द उचारण कीता है। सो आओ संगत जी शब्द दे जो विचार है आपां सतगुरु जी दे पावन शब्द विचार नाल जुड़िए मन बिरतियां एकाग्र करदिआं होइआं उचारण करो जी सतनाम सिरे वाहे गुरु साहिब जी सतनाम सिरे

0: महाराज कह लगे अपने मैं सतगुरु तो बलिहार जावा, मैं अपने गुरु तो वारने जावा। क्यों जी, जिन्होंने साहिब श्री गुरु हरगोबिंद महाराज जी नू नवा नरोआ कर दिता है। इतिहास तो सारे आप जी जानू हो, सतगुरु जी दे तन दे उपर खेद आया। जदो नरोए हुए ताप दूर होया, नेत्र परगास किया गुरदेव, भरम गए पूरन पई सेव। जदों महाराज जी दे उपर संगत जी ब्राह्मण सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद महाराज जी नू धक्के दे नाल दही खवावन वास्ते आया, ते मालक ने श्री गुरु हरगोबिंद महाराज जी नू रखिया लेप ना लागो तिलका मूल, दुष्ट ब्राह्मण मुआ होए कैसूल। हुण तन दे उपर खेद आया, ते सतगुरु महाराज जी दे तन तो ओ ताप दूर होया, परमेश्वर दा शुकराना कीता। संगत जी, किसी प्रकार दी भी कोई दात मिले, इस असल विच पावन पवित्र शब्द विच सतगुरु सानू परमेश्वर दा शुकराना करन दा तरीका दस दे हन। जे सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह परमेश्वर दा शुकराना कर रहे हन, ते सानू किन्नी लोड़ है दाते दा शुकराना करन दी। दात मिली है, ते मिली हुई दात दे नाल रब जी दा कोटान कोट वरी शुकराना करिए। संगत जी, उलामा कदे ना दईए के मालक जी तुसी सानू दिता ही की है। जदो भी अमृत वेले उठद्या सार सब तो पहला शुकराना पाठ करके शुकराना, दाता तेरा बड़ा कुछ दिता होया, दाता तुसा ने दितियां सो क्यों बिसरै, जिन सब किछ दिया उसनू क्यों भुलिए, जिसने पाई सानू सारा कुछ ही दिता होया है। असल विच दुख लगन दा कारण की है भाई, दुख लगन दा कारण ही ए है जदो जीव ना शुकरा हो करके तुरे, परमेश्वर दा कदे शुकराना ना करे, सदा ही उलामे जिया देंदा रवे भी रब जी मेरे कोल ए नहीं, मेरे कोल ए नहीं। उलानो मैं काहू ना दियो, भाई परमेश्वर नू उलांबा नहीं बल्कि उदे शुकराने दे विच जुड़िए। दाता तेरा बड़ा शुकराना है, बहुत आप जी दा शुकर। साहिब जी, आप जी ने सानू ए नवे नरोआ शरीर देना कीता, इस तो वड्डी संगत जी होर जड़ी दात ओ की मंगीए। जिन्हां दे कोल चलन वास्ते पैर नहीं, जेड़े अपने जीवन किरिया नू सोध नहीं सकदे, ओ किसे दे उपर मोहताज ने। कोई आन के उन्हां दे मुख विच रोटी पानी पौंदा है, किरिया सोधन वास्ते सहायता दी लोड़ पैंदी है। उन्हां दा जीवन वेखो, अपना जीवन सतगुरु महाराज जी ने पाई, इतनियां दातां दित्तियां, नवा नरोआ शरीर दिता, उठ सकने हां, चल सकने हां, नवा नरोआ शरीर है, ते मालक दा शुकराना क्यों ना करिए। हां, जिहड़ा जीव असल विच जीव तृष्णा वस होके कदे रजदा कोई नहीं, मालक जी मेरे कोल ए नहीं है, रब जी मेरे कोल ए नहीं है। सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव महाराज सानू पावन पवित्र शब्द दे राही उस परमेश्वर दा शुकराना, उदा शुकर करदिया होया सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव महाराज सानू अज दे पावन पवित्र शब्द विच दस रहे हन। गोरे अपने बलिहारी जिन पूरन पैज सवारी, जिन्ने हुण नाम दी दात दे करके साडे जीवन नू सवार दिता है। किवें सवारिया जी, श्री सुखमनी साहिब दी पावन पवित्र पौड़ी सभना नू आप जी नू जबानी कंठ, सतगुर सिख की करे प्रतपाल, सेवक कौ गुर सदा दयाल, सिख की गुर दुरमत मल हिरै। मेरे सतगुरु जी ने नाम दी दात दे करके जिहड़ी भैड़ी मत सी भैड़ी मत नू खिच लिया। सिख की गुर दुरमत मल हिरै, गुर बचनी हर नाम उचरै, सतगुर सिख के बंधन काटै, गुर का सिख विकार ते हटै, सतगुर सिख कौ नाम धन दे। मालक जी ने नाम धन दिता, नाम धन देन दे नाल जिन पूरन पैज सवारी, ओ दिते हुए नाम धन ने जीवन नू सवार दिता है। मालक जी ने पावन स्थाना दियां सेवावां दे दितियां, बंदा कहे कि मेनू कुछ नहीं जुड़िया। संगत जी, जिनू मालक जी ने नाम धन दी दात झूली विच पा दिती, मगर उहदे कोल रह ऐसा किहड़ा गया जिहड़ा उहनू ना प्राप्त होवे। भगत नामदेव साहिब जी का पावन एक वचन है, देवा पाहन तारी अले, राम कहत जन कस ना तरे। ओ तारन ते आए ते भाई उन्हें पत्थरां नू तार दिता, केड़ा ऐसा है जिन्हें परमेश्वर दा नाम सिमरिया होवे ते पवसागर तो पार ना होवे। भगत नामदेव साहिब जी कहन लगे अगलियां पंक्तियां विच ध्यान नाल ए बचन प्रेम नाल सुनने, देवा पाहन तारी अले राम कहत जन कस ना तरे। रहाओ तारी ले गनका बिन रूप कुबजा ब्याद अजा मल तारी अले। चरण बदक जन तेउ मुक्त भये हौ बल बल जिन राम कहे। दासी सुत जन बिदर सुदामा ए उदाहरना ओ दितियां, जिन्ना प्रथाए लोकां कह दिता भी इन्हां दा कदे जीवन विच पार उतारा नहीं हो सकदा। जिन्ना प्रथाए लोकां ने ए धारणा बना ली भी ए बड़े वड्डे पापी हन। भगत नामदेव साहब जी कहन लगे नहीं लोको, जिदन ओ तारण ते आए भाई ओ तार लैंदा है। चरण बदक जन तेउ मुक्त भये हौ बल बल जिन राम कहे। दासी सुत जन बिदर सुदामा उगर सैन को राज दिए। जापहीन तपहीन कुलहीन क्रमहीन नामे के स्वामी ते उतरे। मालिक जी ने नाम दी दात दिती। संगत जी दिती हुई दात नाम दी दात ने साडे जीवन दी। सतगुरु महाराज कहिंदे भाई जिन पूरन पैज सवारी, साडे जीवन दी जिहड़ी पैज सी उहनू मालिक ने सवार दिता है। डिगे हुए सां, डिग्या होया नू सतगुरु जी ने चुक लिया नाम धन दे करके। इस दिते हुए नाम धन दे नाल दुरमत जिहड़ी भैड़ी मत सी, सतगुरु जी ने भैड़ी मत जिहड़ी सी ओह दूर कर दित्ती। डिग्या होया नू चुक लिया, इस करके सतगुरु जी महाराज इत्थे पहले बचना विच कहिंदे, मैं अपने ऐसे गुरु तो वारने जावां भाई बलिहार जावां। वारने जाना बलिहार जाना, अपना आप कुर्बान करके रख देना, अपना आप साहिब दे चरणा तो मथा टेकण दा भाव है। महाराज मैं जिहड़ी अपनी मत है, मैं अपनी मत आप जी दे चरणा विच रखना हां। जदों सतगुरु जी दा वचन पढ़ने आ, गुर की मत तू लेह आने, गुरु दी मत नू लै। मथा टेकण दा भाव केवल बाहरी तौर ते सजदा नहीं, गुरु दे चरणा विच मथा टेकिया। वारने गए बलिहार गए, महाराज मैं अपना जिहड़ा मथा सीस आप जी दे चरण कमलां विच रखदा हां। और जबानी कलामी कह दईए, महाराज मैं वारने जावां बलिहार जावां। वारने जाण ते बलिहार जाण दा भाव है कुर्बान हो जाना अपने इष्ट तो, कुर्बान हो जाना अपने गुरु तो। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह, जिन्हां दे इतने कर्ज हन सिखां दे सिर दे उपर असाडे उपर, हमरा मस्तक दाग दगाना हम कर्ज गुरु बो साडे। सतगुरु महाराज जी दे, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दा देन कौन दे सकदा है भाई। सतगुरु महाराज जी ने फिर इस दे बदले मंगिया कि गुरु के सिखा सतगुरु महाराज जी दी ताबिया विच रह, सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु दी ताबिया दे अंदर सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे हुक्म ते संगत जी गल आपां कर रहे हां कुर्बान होण दी, ते खिमा इस गल लई करना भार सानू लग रहा है दस्तार दा वी। जिहड़े भाई नहीं अजे जिन्हां ने खंडे बाटे दी पौल छकी, भार सानू लग रहा है अपने ककारां दा वी, भार सानू लग रहा है सतगुरु महाराज जी दी दित्ती होई दात दा वी। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी दा कर्ज कौन उतार सकदा है। संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा भिंडरां वाले जदों उन्हां ने फतेहगढ़ साहिब पावन पवित्र अस्थान ते जाना, भोरा साहिब शहीदी अस्थान ते कहिंदे उन्हां ने उस थां ते जा करके ना भोरा साहिब शहीदी अस्थान ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਲਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੁੱਖੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਵਹਿ ਤੁਰਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਬਾਤ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਤੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੁੱਖੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛਮਕਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ सतगुरु महाराज सचे पातशाह जी का कौन इस प्रकार कोई देन दे सकता है। कई वरी ए कहिंदे हन वेखो जी प्रचार दे वास्ते सानू फिल्मां दा सहारा लेना पवेगा। उस संगत जी जिस दे कोल अपना इतिहास साबित होवे ओ दीवार उस थां ते होवे, इस तो वड्डी होर केड़ी ऐसी उदाहरण है जिहड़ी आपां कोई पेश कर सकीए। लो जी एदू वड्डी केड़ी ऐसी कोई उदाहरण है। फिल्मां आ तां चलो ए जिहड़े चित्र दे रूप दे अंदर ए सदीवी नहीं, इस तो वड्डी होर केड़ी उदाहरण हो सकती है। सरहंद फतेहगढ़ साहब दा पावन पवित्र अस्थान के सतगुरु महाराज जी ने हे गुरु के सिखो असाडे वास्ते एक कार्य कीता। हां पता है, पता होने दे बावजूद भी सतगुरु महाराज जी तो बेमुख होकर के तुरना। धन गुरु अर्जन देव महाराज कहिंदे हे गुरु के सिखा गुर अपने बलिहारी, मैं अपने गुरु तो बलिहार जावा। जिन पूर्ण पैज सवारी, जिन्हें साडे पूर्ण पैज सवार दिती है। कलगीधर महाराज जी ने डिग्गिया होया नू संगत जी सानू सरदारियां बख्शिया, सुंदर दस्तार बख्शिश कीती। हक नहीं सी घोड़सवारी करन दा, हक नहीं सी आपां तन दे उपर शस्त्र पहरन दा। एक कलगीधर महाराज सचे पातशाह जी ने सानू जिहड़ियां हन ए संगत जी इजाजता लैके दित्तियां। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सचे पातशाह जी ने सानू ए सुंदर दस्तार बख्शिश कीती। कई वारी ना विदेश दे विच नाल दे कई वारी संगी पुछ लैंदे हन कि भाई सारे जितने भी हैं ओ हैलमेट पहन दे हैं, मोटरसाइकिल चलाउन लग्या, केड़ी ऐसी दात, केड़ी ऐसी ताकत जिहड़ी भाव तुसी दस्तार सजाउंदे हो, दस्तार सजाउण वालियां नू हैलमेट पाउण दी लोड़ नहीं पैंदी। केड़ी ऐसी ध्यान जांदा है कलगीधर महाराज इस समुची ताकत दे पिछे। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी आप हन जिन्हां ने भाई सानू ए दात देना कीती, जिन्हां ने सानू ए बख्शिश देना कीती। हे गुरु के सिखो कलगीधर महाराज सचे पातशाह जी दी दित्ती हुई इस दात नूं, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी दित्ती हुई इस बख्शिश तो मुंह ना पुआईए। गुरु महाराज जी दी पंथ दी ताब्यादारी दे विच चलीए। सतगुरु महाराज जी ने असाडे डिगे हुए जीवन नूं सवार दिता है। जिन पूरन पैज सवारी, नाम दी दात दे करके साडे जीवन नूं सवारिया है।
1: मन चिंदिया फल पाया,
0: इस पावन पंक्ति मन चिंदिया फल पाया, दिते हुए नाम दी दात दे नाल हुण मन चिंदिया फल सानू प्राप्त होया है। मन चिंदिया फल कोई भी अपने हिरदे दे अंदर सतगुरु महाराज जी दा एक पावन पवित्र बचन है, कहिंदे जिन्हां ने अपना मित्र उस परमेश्वर नू बनाया। मित्र ता बनाउने हां, एक पावन बचन है, जाका मीत साजन है समिया, तिस जन कहो कहो का की कमियां। हे भाई दसो जिन्हां दा मित्र प्रभु बन जाए, मित्र बनाइए। अरदास बेनती जोदड़ी करिए, साहिब जी तुसी मेरे मित्र हो। ए पावन बचन आपां सारे पढ़ने हां, थेर घर बैसो हरजन प्यारे सतगुर तुमरे काज सवारे। शब्द भी पढ़िया ज्ञानी जी, पाठ भी कीता, साडे जीवन दे कार्ज क्यों नहीं सवारे गए। असाथों की भुल होई, साडे जीवन दा कार्ज क्यों नहीं रास हो रहा। सतगुर तुमरे काज सवारे तो पहला सतगुरु जी ने जेड़ी नाल पहली पंक्ति बख्शिश कीती, थिर घर बैसो। सतगुर तुमरे काज सवारे है, पर उस तो पहली पंक्ति है थिर घर बैसो हरजन प्यारे अपने निज घर दे विच मुड़िया। भाई उस परमेश्वर दे घर विच जुड़िया होया, मन चिंदिया फल पाया। केड़ी ऐसी वस्तु है जिहड़ी महाराज जी दे घर तो सेवा विचो ना मिलदी होवे। धन गुरु अर्जन देव महाराज जी दा पावन पवित्र जिहड़ा बचन आपां पढ़ने हां, पाछं क्रोध अगर निवै निरासन आस पूर्ण है। जिहड़े पिछे रह गए इकना ने आण के अरदास कीती, महाराज असीं सदा पिछे रहे हां, साडा चित वी करदा है आगू बन के विचरीए। लोकां दे पिछे होके ही तुरे हां, महाराज कहिंदे पाछं क्रोध अगर निवै। एक आया महाराज आस नहीं पूर्ण हुंदी, निरासन आस पूर्ण है। निराश हो चुकियां दियां आसां पूर्ण होईयां, ਨਿਰਧਨ ਧਨ ਧਨਵੰਤ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਧਨ ਹਨ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧਨ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤੀ। ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਰੋਗ ਖੰਡਣਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੇਦ ਸੀ, ਰੋਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੇਦ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਨ ਤੇ ਰੋਗ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਰੋਗੀ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਖੰਡੋ ਰੋਗ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਸੀ ਭਾਈ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਤਿਅੰਗ ਭਗਤ ਦਾਨੰਗ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਕੀਰਤਨੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਭਗਤਿਅੰਗ ਭਗਤ ਦਾਨੰਗ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਕੀਰਤਨੈ, ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੁਰਖ ਦਾ ਤਾਰੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਿੰ ਨਾ ਲੱਭਿਅਤੇ। ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਿੰ ਨਾ ਲੱਭਿਅਤੇ, ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
1: ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਸਦਾ ਧਿਆਇਆ,
0: ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਸਦਾ ਧਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਸਦਾ ਧਿਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਧਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਓ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਇਹ ਆਰੰਭ ਵਾਲੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਐਸੇ ਵੱਡਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ, ਵਾਰਨੇ ਜਾਵਾਂ ਗੋਰਿਆਂ

0: ऐसे मालिक जी ने फिर प्रभु नू सिमरना कीता प्रभ अपना सदा त्याया अपने मालिक जी नू पाई सिमरिया है
1: संतोह तिस बिन अवर ना कोई
0: हे संत जनो तिस बिन अवर ना कोई हे पाई उस तो बिना होर कोई नहीं सी जिड़े मालक तो बिना जिन्ना श्री गुरु हरगोबिंद महाराज जी नू नवा नरोआ कर दिता होवे संत हो तिस बिन अवर ना कोई ओदे तो बिना होर कोई नहीं है। संगत जी मालक तो बिना अपने साहिब दे दर तो बिना होर कोई भी ऐसा घर नहीं ते सिख दे वास्ते ता सदा ओदे अपने हिरदे दे अंदर ए उकरिया ही होवे संतो तिस बिन अवर ना कोई उस मालक जी तो बिना होर कोई

महाराज जी दे पावन पवित्र उच्चारण कीते हुए इस श्लोक अंदर सिखी घर दे अंदर ता सतगुरु जी ने पहला मरण दी ही जाच सिखाई। आपां ये शब्द मरना कहने हां, सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने मरना शब्द वरत्या। राग वडहंस अलानिया दे सिरलेख हेठ जदो सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी दे बचन आपा पढ़ने, गुरु नानक देव महाराज जी भी मरण शब्द लिखते वरतते हैं। जदो आपा पढ़ने हां, आवो मिलो सहेली हो सचड़ा नाम लए हां, रोवै बिरहा तन का अपना साहिब संभाले हां, साहिब संभाले पंथ निहाले असा भी उथे जाना, जिसका किया तिन ही लिया हुआ तिसै का भाणा। उस सिरलेख हेठ जदो बचन आउंदे ने मरन ना मंदा लोका आखी है, हे भाई मौत नू मंदा ना कहो, जे मर जाना ऐसा कोई जिन्ना नू भाई मरना आ गया। पहला मरन कबूल, हे गुरु के सिखो गुरु दे करो आवाज आई पहला मरना सिख लै। महाराज मरना किस प्रकार, अपना हंकार छड़ना कर, ए पी अर्थ अपना जिहड़ी अंदर दी हंगता है, जिहड़ा तू हंकार दियां पंडा चुकी फिरना है, जिस हंकार दे कारण तेरे कोल गुरु दी मत नहीं आ सकदी। आए हां हंकार कीता, कबीर बांस बुढ़ाई उड़िया इउं मत डूबो कोई, चंदन कै निकटै बसै बांस सुगंध ना होए। हंकार कीता, कीते हुए हंकार दे कारण संगत जी ओ खाली रह गया। पहला मरन कबूल, जीवन की छड आस, ज्यौन दी अंदर दी आस छड। क्यों जी, केड़ी जिंदगी दी आस छड़नी है, ओ है संगत जी स्वार्थ भरी जिंदगी दी आस छड। महाराज कहते जड़ी स्वार्थ भरी जिंदगी है तू ए दी आस ला, हंकार तू हंकार दियां पौड़ियां तो हेठा उतर, निर्माणता निम्रता दे घर विच आ। निम्रता दा संगत जी जदो बाबा फरीद साहब दा पावन पवित्र बचन पढ़ने आ, बाबा फरीद साहब कहिंदे जो तै मारन मुक्कियां तिना ना मारे, घुम आप नड़ै घर जाइए पैर तिना दे चुम। निर्माणता धन बाबा फरीद साहिब, पहला मरन कबूल, पहला मरना कबूल कर। मरन मुनसा सूरिया हक है, हक कहिए प्रवान हन, कबूल कहिए ओ दर दे अंदर प्रवान होए। मरन मुनसा सूरिया हक है, जे होए मरन मरै परवानो, सूरे से ही आगै आखिया दरगै पावै साची माणो, दरगै माण पावै पत स्यो जावै, आगै दुख ना लागै कर एक तिहावै पत स्यो जावै। भाई उन्होंने एक परमेश्वर नू आराधना कीता, उन्हां दा मरना प्रवान होया है। आओ पंक्ति आपा हाजरीन सारे पढ़िए, सारयां नू संगत जी पावन पवित्र बचन जबानी याद हैं।

फिर महाराज कहिंदे भाई ए पहली कसवट्टी मेरे सतगुरु महाराज पहला तेनू मरण सिखी सतगुरु महाराज जी ने पहला मरण दा दुनिया जिउण दा वास्ते ढंग सिखाउंदी। बाबा कबीर साहब दे दो पावन पवित्र बचन जे मरना सब जगत तरासया लोकी तरा तरा कर रहे हन धन बाबा कबीर साहब तुहानू जीवन चंगा नहीं लगदा। बाबा कबीर साहब जीवन नाल तुहानू चाह नहीं ओ की कहिंदे ने कबीर मोहे मरने का चाओ है मरो ता हर का द्वार क्यों क्योंकि उन्होंने संगत जी असल विच अपने जीवन नू ज्यो लिया है उन्होंने जीवन सिख लिया है उन्होंने जीवन दा ढंग है जे मरना सब जगत तरासया सो मरना गुर शब्द परगासया अब कैसे मरो मरन मन मानिया मर मर जाते जिन राम ना जानिया मरनो मरन कहे सब कोई सहजे मरा अमर हुए सोई। भाई मरना किस प्रकार दे नाल है हंकार दिया पौड़ियां निम्रता दे घर विच आ गुरु के सिखा सतगुरु महाराज जी दे दर दे अंदर झुक के नमस्कार कर तेनू जीवन दे अंदर मरण दा वल आए हंकार तो नीवा हो करके आ हंकार तू जीवन विच कदे ना करी हो सबना की पहला मरन कबूल फिर नाल क्या जीवन की छड़ आस स्वार्थ भरी जिंदगी दी तू

0: दूसरा श्लोक सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी का, मुआ मुंदा पेख भाई जेड़ा मर चुका है ओनू तू जिउणा मन। स्पष्ट सीधे अर्थां दे रूप विच जेड़ा मर चुका है संसार दियां पदार्थां खाशां दे वल्लों ओनू तू की कर, जिवंदा पेख ओनू तू जिवंदा मन। जिवंदे मर जान ते जेड़े अजे भी स्वार्थ भरी जिंदगी विच ने ओना नू तू मरिया होया जान। महाराज जी दे पावन स्थान तो मुख वाक जो आप सरवण करने हां, त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग सोया त्रिग त्रिग कापड़ अंग चढ़ाया, भाई स्वार्थ भरी जिंदगी ओ तां है ही त्रिकार। जीवंदे मोआ जीवंदा पेख, जीवंदे मर जान जिहड़े स्वार्थ भरी जिंदगी विच उहनां नूं भाई तूं मोया होया जानना कर।
1: जिन्ना मोहब्बत एक सिओं ते मानस प्रधान।
0: भाई केड़े हन प्रधान, कौन हन श्रोमणी? महाराज कहिंदे जिन्हां दी प्रीत एक दे नाल लगी हुई है। गुरु अर्जन देव महाराज तुहाडा सलाहकार कौन है? श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज तुहाडी दोस्ती किदे नाल है? हर इक सै नाल मैं दोस्ती, हर इक सै नाल मैं रंग। धन गुरु अर्जन देव महाराज कहिंदे मेरा मित्र एक है, मैनू जदों सलाह लैण दी लोड़ पवे मैं अपने एक मित्र दे नाल ही सलाह लैंदा हां। हर इक सै नाल मैं गोस्टे, कहिंदे मैं इको मित्र दे नाल मैं सलाह करना हां, मेरा ओही मित्र है ते ओ मित्र ऐसा है जिदे तो मैं वार वार मंगा ते ओ मुंह भेड़ा भी नहीं करदा। सतगुरु महाराज जी दे पावन पवित्र शब्द विच मुंह मैला करै ना भंग, कहिंदे मुंह मैल भेड़ा भी अपने मत्थे तिरो वट भी नहीं कदे पाए। मैं अपने ऐसे नूं एक अपना मित्र बनाया जिन्हां मुहब्बत एक स्यों ते मानस प्रधान। ओ प्रधान ओ श्रोमणी हन महाराज कौन? जिन्हां दी एक

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस की हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555 गिद्दा इंश्योरेंस शर्ता लागू।
1: आप सुन रहे हैं पुण्य दर्शन।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

ओबिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लिए बनाउंदे ने उनां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ओबिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद इन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ओबिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते।

0: टेंशन टेंशन मेरी टेंशन
1: की होया
0: थे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
1: काका जी टेंशन छोड़ो, फोन चको, कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, इम्प्लॉयर स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT अपील ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-503-503
0: या 90-77-97-33
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
0: हर कदम तुहाडे नाल।
2: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने, बंसल लॉयर्स। तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
3: बलजीत व्याह वास्ते ज्वेलरी देखन तुन्ना ज्वेलर्स चलिए।
4: यार उना दा डेंडी नॉग वाला स्टोर ना बड़ा ही दूर है।
3: ओ हुन टेंशन नहीं, हुन डेंडी नॉग तो इलावा अपने इलाके सेंट एल्बन्स विच तुन्ना ज्वेलर्स स्टोर खुल गया। ओही भरोसा ते 30 साल तो वध वरियां दा एक्सपीरियंस। रेडीमेड गोल्ड, डायमंड ते सिल्वर ज्वेलरी दे नाल नाल आपा बनवा सकदे हां कस्टमाइज्ड ज्वेलरी भी। तुन्ना ज्वेलर्स 99 मेन रोड वेस्ट सेंट एल्बन्स अते 341 लॉन्सडेल स्ट्रीट डेंडी नॉग। फॉर मोर इन्फो कॉल 0499-2535-45।

होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

0: ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਵਿੱਚ ਅਗੇਨ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੋ ਸਵਿਚਿੰਗ ਟੂ ਹਿੰਦੀ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸ ਕੇ ਸਾਥ ਜੋ ਭਾਈ ਲਾਈਫ ਥੋੜ੍ਹਾ ਈਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ, ਸੱਚ ਅ ਨਾਈਸ ਗਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਮੇਂ ਫਲਾਈਟਸ ਪਕੜਨੀ ਹੋ ਤੋ ਇਕੋਨਮੀ ਕਿਉਂ ਹੀ ਪਕੜਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਜੇ ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਇਕੋਨਮੀ ਛੋੜ ਕਰ ਤੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਂ ਜਾਓ, ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਂ ਵੀ ਖਰਚਾ ਇਕੋਨਮੀ ਸੇ ਕਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਇਹ ਤੋ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਜੀ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਮਾਰੇ ਗੈਸਟ ਬੈਠੇ ਹੈ ਗਗਨ ਜੀ, ਉਨਸੇ। ਗਗਨ ਜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਨ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਟਰਨ ਲੈਫਟ ਫੋਰ ਲੈਸ, ਐਮ ਆਈ ਰਾਈਟ?
1: ਹਾਂਜੀ।
0: ਹਾਂ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਟੰਗ ਟਵਿਸਟਿੰਗ ਸਾ ਨਾਮ ਔਰ ਬੜਾ ਟਵਿਸਟਿਡ ਸਾ ਕੰਸੈਪਟ ਜੋ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਸਮਝਦੇ ਹੈ, ਗੁੱਥੀ ਖੋਲਦੇ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਆ ਸੀਨ ਹੈ। ਤੋ ਗਗਨ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674।
1: ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਭਾਅ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ।
0: ਨਹੀਂ, ਵੀ ਆਰ ਹੈਪੀ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਯੂ। ਲੌਂਗ ਡਿਊ ਥਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਉਸਕੇ ਲਈ ਕਿ ਹਮ ਲੋਕ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਥੇ ਟਿਊਨਿੰਗ, ਕਿ ਜਬ ਸੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਦ ਥਿੰਗਸ ਦੈਟ ਯੂ ਡੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਫੇਅਰ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਲੈਵਲ ਪਰ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਸੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਵੀ ਸਕਤੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ, ਅਗਰ ਹਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਆਲਟਰੇਸ਼ਨਸ ਲੇਕਰ ਆ ਪਾਏ ਤੋ ਮੁਝੇ ਥਾ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲਿਸਨਰਸ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈ, ਦੇ ਸ਼ੁਡ ਨੋ ਇਟ, ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਆਈ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਕਿ ਕਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਟਰਨ ਲੈਫਟ ਫੋਰ ਲੈਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋ ਇਹ ਬਤਾਇਆ ਮੈਂ
1: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਟਰਨ ਲੈਫਟ ਫੋਰ ਲੈਸ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਹਾਂ ਪੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੋਂ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ, ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪਰੂਵ ਟੂ ਦੈਮ ਕਿ ਇਟਸ ਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਫਲਾਈ ਇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਬਿਨਾਂ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ।
0: ਓਕੇ,
1: ਠੀਕ ਹੈ। ਅਬ ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਯੂ ਐਸ ਮੈਂ, ਉਸਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਅਬ ਫਿਊਲ ਕੋਸਟ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਪਤਾ
0: ਜੀ।
1: ਉਸਸੇ ਕਿਆ ਹੋਗਾ, ਜੋ ਅਭੀ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਹੈ
0: ਜੀ
1: ਵੋ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਅਭੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ।
0: ਓਕੇ,
1: ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਕੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਤਾ ਹੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਆਪਕੋ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਟਰਨ ਲੈਫਟ ਫੋਰ ਲੈਸ ਹੈ ਕਿਆ
0: ਜੀ।
1: ਆਪਨੇ ਅਗਰ ਮੈਲਬਰਨ ਸੇ ਪੈਰਿਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਕਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਤਾ ਹੈ ਯੂਰਪ ਜਾਣਾ
0: ਜੀ,
1: ਕਰੈਕਟ ਹੈ
0: ਜੀ।
1: ਯੂਰਪ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਮਰਸ ਮੇਂ, ਜੁਲਾਈ ਔਗਸਤ ਸਪਟੈਂਬਰ
0: ਜੀ।
1: ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਕੀ ਟਿਕਟਾਂ ਹੈ 12,000 to 15,000 ਕੀ
0: ਜੀ,
1: ਔਰ ਸਭ ਕੋ ਪਸੰਦ ਹੈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਏਅਰਲਾਈਨਸ, ਟੋਪ ਟੀਅਰ ਏਅਰਲਾਈਨ
0: ਜੀ।
1: ਇਕੋਨਮੀ ਕੀ ਹੈ 2,000 to 2,500 ਕੀ
0: ਜੀ,
1: ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ,
0: ਕਾਫੀ
1: 8-10 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ
0: ਜੀ।
1: ਅਬ ਸਰ ਯੇ ਸੁਣੋ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮੇਂ ਫਰਕ ਸਿਰਫ 2 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਮੈਲਬਰਨ ਟੂ ਪੈਰਿਸ ਕੀ ਟਿਕਟ ਜੋ ਹੈ ਵੋ 80,000 ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੀ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਫਲਾਇਰ ਪੁਆਇੰਟਸ
0: ਜੀ। ਹਾਂ ਮੈਮ, ਯਹੀ ਚਾਹਤਾ ਥਾ ਕਿ ਹਮ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਯੇ ਸਮਝ ਲੇ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਿਆ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਵੋ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ।
1: ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਫਲਾਇਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਸਕਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ, ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਹੈ 200-300, ਉਨ ਸਭ ਕੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਫਲਾਇਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਮੋਸਟਲੀ ਹੋਤੇ ਹੈ। ਅਬ ਜੋ ਕਾਮਨ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਕੋ ਪਤਾ ਹੋਗਾ
0: ਜੀ,
1: ਕੌਂਟਸ, ਵਰਜਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ।
0: ਓਕੇ,
1: ਕੌਂਟਸ ਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਹੈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਫਲਾਇਰ ਕਾ, ਵੋ ਕੌਂਟਸ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਥੋੜੇ ਸੇ ਲੇਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੋ ਕੌਂਟਸ ਹੀ ਬੋਲਤੇ ਹੈ। ਜੋ ਵਰਜਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈ ਵੋ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੋ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ।
0: ਵੈਲੋਸਿਟੀ
1: ਤੋ ਆਪਕੇ ਜਿਤਨੇ ਲਿਸਨਰਸ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਲਮੋਸਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕੇ ਸਾਥ ਬੋਲ ਸਕਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ 70-80%, ਇਫ ਨੋਟ 90, ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਂਗੇ। ਬਹੁਤੋਂ ਕੇ ਪਾਸ ਏਮੈਕਸ ਕਾਰਡ ਹੋਗਾ, ਬਹੁਤੋਂ ਕੇ ਪਾਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਾਰਡ ਹੋਗਾ, ਬਹੁਤੋਂ ਕੇ ਪਾਸ ਕੌਂਟਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਂਗੇ, ਪਰ ਉਨਕੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨਕੋ ਯੂਜ਼ ਕੈਸੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੋ ਫਾਸਟ ਅਰਨ ਕੈਸੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਵਾਪਸ ਜਾਤੇ ਹੈ ਕਿ ਟਰਨ ਲੈਫਟ ਫੋਰ ਲੈਸ ਹੈ ਕਿਆ
0: ਜੀ।
1: ਤੋ ਮੈਂ ਐਵਰੀਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਕੇ ਲੀਏ ਜੋ ਇਤਨਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਹਮ ਇਤਨਾ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹੀਂ ਪੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹਾ ਥਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਇਟਸ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਟੈਕਸ ਪੇਇੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ।
0: ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ,
1: ਨੋਟ ਜਸਟ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਜਾਂ ਮੈਲਬਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਮ ਇਤਨਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਮ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤੇ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਮੇਂ ਜਾਣਾ ਸਭ ਕੋ ਹੈ, ਬਟ ਨੋਬਡੀ ਜਸਟੀਫਾਈਜ਼ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਦੈਟ ਮਚ, ਉਤਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਉਨਕੋ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਤਾ ਜੈਸੇ ਬੋਲਤੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਮੇਂ ਡਾਲ ਦੋ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੇਂ ਡਾਲ ਦੋ ਜਾਂ ਬੜੀਆ ਹੋਟਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਕੁਛ ਚਲਾ ਦੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਬ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ
0: ਜੀ,
1: ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਕੇ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਸਪੈਂਸ ਕੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ,
0: ਓਕੇ,
1: ਔਰ ਉਸਕੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪ 50% ਫਲਾਈਟਸ ਤੋਂ ਐਸੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, 50% ਆਫ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਰੀਟੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਤੋ ਅਗਰ ਇੱਕ ਟਿਕਟ 9,000 ਕੀ ਹੈ
0: ਜੀ,
1: ਜਸਟ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਕੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਹੈ,
0: ਓਕੇ।
1: ਸਿਰਫ ਉਤਨਾ ਕਰਨੇ ਸੇ ਆਪ ਉਹ 9,000 ਕੀ ਜੋ ਟਿਕਟ ਹੈ ਵੋ 4.5 ਮੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਤੇ ਹੋ।
0: ਓਕੇ,
1: ਆਈ ਗੋ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਫਰਦਰ, ਮੈਂ ਉਸਸੇ ਵੀ ਆਗੇ ਜਾਤਾ ਹੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰਤਾ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਸਿਖਾਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਸੇ ਆਪਣੇ ऑर्गेनिक जिसे कहते हैं ना फ्री पॉइंट्स, जिनकी कोई कॉस्ट नहीं है, अपने वो कैसे कमाने हैं ताकि जो ये 50% है वो चला जाए 90% तक. अगर आपके ज़्यादा हो तो एक एग्जाम्पल दूँ.
0: जी जी.
1: मेरा जो बेस्ट है अभी तक का एग्जाम्पल वो है मेलबर्न टू सिंगापुर विद सिंगापुर एयरलाइंस इन फर्स्ट क्लास फॉर $95. अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं तो वहाँ पे ये एक वीडियो है, सिंगापुर एयरलाइंस फर्स्ट क्लास मेलबर्न टू सिंगापुर 2024 में मैं गया था. एंड आई यूज माई पॉइंट्स, और वो सारे जो पॉइंट्स मैंने अर्न किए थे, कमाए थे, उनकी कोई कॉस्ट नहीं थी, बिकॉज दैट्स जस्ट थ्रू नॉर्मल स्पेंड. और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा हूँ. देर आर वेज, तरीके हैं पॉइंट्स कमाने के बहुत फास्ट.
0: मेरा इस पर यही आ जाता बेसिकली सवाल ना, कि काफ़ी लोगों को पता होता है कि यार अगर क्वांटस पॉइंट्स हो मेरे पास तो है ना फायदा है. ये कंपनियां अपने लेवल पे भी काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ को मार्केट भी करती हैं, राइट?
1: बहुत ज़्यादा कर रहे हैं.
0: पर ये आ जाता है कि जब आप ये, ज़्यादातर आदमी इस वजह से डरता है यार ये ना कहने की बात नहीं है, होता ना कान इदा नहीं फड़े इदा फड़ लिया.
1: हाँ जी, हाँ जी.
0: कि बात वहीं पर आ जानी कि मेरा खर्चा थोड़ा थोड़ा करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उतना ही हो जाएगा जितने की शायद मैंने टिकट लेनी हो, है ना. तो कैसे इन, अगर एक हम केस स्टडी पकड़ लें,
1: हाँ जी,
0: अगर मैं एक ऐसी केस स्टडी ले लूं जिसमें मैं, क्योंकि मेजरली देखने वाले जो होंगे और सुनने वाले हैं, हम लोग हॉलीडेज के लिए तो काफी जगहों पर 2 साल में एक बार या 1 साल में एक बार जाते हैं, पर इंडिया बहुत चक्कर लगता है,
1: बहुत चक्कर लगता
0: है. और यूजली फैमिलीज की फैमिलीज जाती हैं, है ना. तो एक
1: मिनिमम 4 लोग,
0: है ना. तो एक तो इस पर यह बात है कि कैसे कहते हैं हम कि ऑर्गेनिक खर्चे से हम कर सकते हैं, एक केस स्टडी अगर उस पर हो जाए. और सेकेंडली हम क्योंकि बिजनेस के बारे में या फर्स्ट क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, दिस कैन वर्क ऑन इकोनॉमी आल्सो, राइट? समझो अगर 4 लोगों की फैमिली और अगर ऑन करना तो उस पर भी चल सकता है.
1: प्रीमियम इकोनॉमी तो और भी इजी है.
0: हाँ, तो आप इस पर पहले ऑर्गेनिक कैसे होता है कि मेरा आम जो खर्चा है, ग्रोसरी का, पेट्रोल, इंश्योरेंसेस, घर की, गाड़ी की, ये सब जो पता है मेरे को ये खर्चे करने पड़ेंगे, है ना, और उसमें हम कैसे ऑल्टरेशंस लेकर आ सकते हैं, आप कैसे हेल्प कर सकते हो लोगों को कि वहां से हमें पॉइंट्स आना शुरू हो जाए.
1: तो मैं नॉट ओनली आपको एग्जांपल दूंगा, मैं आपके व्यूअर्स की हेल्प भी करूंगा
0: जी,
1: सो दे कैन एक्चुअली प्रैक्टिकली डू इट. 9 बजे सुबह वो लोग ये कर सकते हैं.
0: ओके,
1: ठीक है
0: जी.
1: इज इट ओके?
0: जी जी जी, बिल्कुल.
1: सो पहला एग्जांपल है, हम लोग शॉप करते हैं एवरीडे रिवॉर्ड्स, मतलब वुलीस पे, बुलवर्ड्स पे
0: जी,
1: ठीक है. बहुत लोग जो है उनका फ्री रिवॉर्ड्स लेते हैं
0: जी,
1: उनका एक पेड रिवॉर्ड्स भी है.
0: ओके,
1: वो $7 मंथ का है.
0: Okay.
1: बहुत लोग लेते नहीं, वो कहते हैं $7 देके क्या फायदा, कुछ करना तो है नहीं.
0: बिल्कुल.
1: बहुत लोग ये नहीं देखते कि वो $7 नहीं है, वो एक्चुअली फ्री है.
0: ओके.
1: अब पूछो फ्री कैसे है?
0: कैसे?
1: क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जब आपने $70 की शॉपिंग करी 10% आपको वापस मिल जाना.
0: अच्छा, तो
1: फ्री हो गया ना?
0: तो काफी
1: और 70 से काफी ज्यादा करते हैं जिनके बच्चे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं कि लोग जाते हैं, और ये हम बहुत लो लेवल की बात कर रहे हैं. जब हम स्ट्रेटजीज की बात करते हैं तो दिस इज एट द लोअर लेवल. तो आपके व्यूअर्स ये ना समझे कि दिस इज द ओनली स्ट्रेटजी, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा है तो मैं आपको बता रहा हूँ.
0: जी जी,
1: ठीक है. तो दिस इज एट द बेसिक लेवल. तो एक कोई भी एवरेज फैमिली ऑस्ट्रेलिया में, अगर मैं उनको कोच करूँ या वो मेरे फॉलो करें इंस्टाग्राम या टिकटॉक या जो भी है, दे कैन अर्न बिटवीन 50 to 100,000 पॉइंट्स पर ईयर जस्ट फ्रॉम वुलवर्ड्स एंड कोल्स without spending more than they are already doing. Example, अब हम जिनके बच्चे हैं वो सारे मूवीज देखते हैं, किंग पिन बोलिन जाते हैं, जेबी हाईफाई से इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हैं, सबके पास आजकल 13 साल की उम्र से आईफोन है, गैजेट्स हैं, एप्पल मैक है. तो अभी आप कोल्स पे जाओ या वुलीज पे जाओ, हर हफ्ते या हर दूसरे हफ्ते डील लगी होती है $20 per dollar ऑन एप्पल गिफ्ट कार्ड्स.
0: जी,
1: ठीक है. 20 points per dollar ऑन TCN हिम गिफ्ट कार्ड्स. अब जितने भी आपके व्यूअर्स सुन रहे हैं, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, 70% से ज्यादा या तो ऊबर ईट से ऑर्डर करते होंगे
0: जी,
1: या ऊबर राइड लेते होंगे
0: जी. बिल्कुल,
1: कम से कम 70% बोल रहा हूँ
0: जी,
1: ठीक है. अब TCN हिम है, TCM हर है, कितने कार्ड आते हैं
0: जी,
1: उनको आप ऊबर में कन्वर्ट कर दो.
0: ओके,
1: 5 मिनट का काम है
0: जी.
1: आपको ऊबर वाउचर मिलेगा, अपने वॉलेट में डाल दो ऊबर के ऐप में. एक्सेप्ट instead of connecting it to your bank, visa or master, या Amex या कोई भी कार्ड से, आप
0: सीधे ऊबर से
1: जाओ, कार्ड खरीदो. वुलीस तो आप जा ही रहे हो, कोल्स तो आप जा ही रहे हो, ये कार्ड खरीदो, टॉप अप करो, आपको 20 पॉइंट. अगर आपका साल में 5,000 भी खर्च होता है, खाने पीने पे, ऊबर से या ऊबर राइड्स पे, बहुत होगा तो बहुत ज्यादा होता है, मैं एवरेज ले रहा हूँ
0: जी बिल्कुल,
1: ठीक है 5,000, व्हाट्स 5,000 बाय 20, 100,000, 100,
0: अच्छा वाह,
1: अभी हमने कोई किसी और स्ट्रेटजी की बात नहीं करी है, ठीक है, और 100,000 एवरीडे रिवॉर्ड्स पॉइंट जो है पुलिस के इक्वल्स टू 50,000 क्वांटस,
0: वो आपके व्यूअर शिफ्ट हो जाते हैं,
1: हाँ वो आपको करने पड़ते हैं, लेकिन एक वंस ऑफ है, कनेक्ट कर दो, अपने आप पॉइंट जाएंगे, शॉपिंग करी, आपकी गाड़ी का दरवाजा खुलने से पहले पॉइंट आपके क्वांटस के पॉइंट्स में पहुंचे होंगे, सो आपके व्यूअर्स के बेनिफिट के लिए वुलीस इज क्वांटस, और कोल्स जो है वो फ्लाईबैस के माध्यम से जाता है वेलोसिटी में,
0: वेलोसिटी में
1: जी
0: ठीक है,
1: कुछ नहीं करना, शॉपिंग करनी है, स्कैन करना है और ठा करके पॉइंट्स आपके क्वांटस में आ जाएंगे। सिमिलरली कोल्स में गए, फर्क इतना है क्वांटस आ जाएंगे उसी सेकेंड, वेलोसिटी जो है वो कॉल्स के थ्रू 3 दिन लगाते हैं, उनका सिस्टम अलग है,
0: आने चाहिए बस बेसिकली
1: आ जाएंगे,
0: ठीक है,
1: यू डोंट हैव टू वेट फॉर वीक्स और इयर्स। और एक और स्टैटिस्टिक, एक एवरेज ऑज़ी, चाहे आप इंडियन हो, ग्रीक हो, जो भी हो, साल में एक एवरेज बंदा, चाहे वो बिजनेस हो चाहे 9 to 5 जॉब कर रहे हो, 100 to 200,000 पॉइंट्स कमाते हैं इफ दे नो व्हाट दे आर डूइंग और इफ दे थिंक दे नो, मतलब उनको अगर लगता है कि मुझे थोड़ा कुछ आता है। मैंने आपको 5 सेकंड में एक ऐसा तरीका बता दिया जो आप 50,000 पॉइंट एक एवरेज यूजर सिर्फ एक स्ट्रेटजी से कर सकता है, लेकिन ये तो सिर्फ एक है। आप कपड़े खरीदते हो, जैकेट शूज खरीदते हो
0: जी,
1: अब कितने गिफ्ट कार्ड हैं जो हर महीने लगे होते हैं, हर हफ्ते लगे होते हैं
0: उसी पे,
1: लोग आईफोन खरीदते हैं
0: जी,
1: लोग नया टेक खरीदते हैं, ये कैमरा लगे हुए हैं खरीदते हैं
0: जी जी जी,
1: यू कैन अर्न 10 points पर डॉलर, नॉट 1 point पर डॉलर, 10 points पर डॉलर। और अगर हम बड़ा खर्चा ना भी लें, एक नॉर्मल हाउस होल्ड की बात कर लें, बिजनेस तो आप छोड़ दो, 1 to 5 lakh पॉइंट कोई भी नॉर्मल हाउस होल्ड कमा सकता है इजीली,
0: जो पक्के यूजुअल खर्चे हैं उनमें करते हुए,
1: उनमें अभी हम बिजनेस तक पहुंचे भी नहीं है, अभी हम बिजनेस, हालांकि मेरा जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, दैट इज गेयर्ड मोर फॉर बिजनेसेस, क्योंकि साफ सी बात है उनका खर्चा ज्यादा है तो पॉइंट्स भी ज्यादा आएंगे और जल्दी आएंगे, बट मैं अभी बात कर रहा हूँ आपके सारे व्यूअर्स की
0: जी, ठीक,
1: टोटल व्यूअर्स जितने भी हैं, सिर्फ सिंपल चीजें करने से 1 to 5 lakh पॉइंट। अब आते हैं दूसरी बार जस्ट क्विकली, 3 lakh पॉइंट ले लेते हैं, 3 lakh पॉइंट का मतलब क्या है
0: जी,
1: कमा तो लिया आपने, 3 lakh पॉइंट का मतलब है कि आप अ फैमिली ऑफ टू, हस्बैंड वाइफ और टू फ्रेंड्स और अ कपल और अ पार्टनर कैन गो टू एशिया एंड कम बैक इन बिजनेस क्लास
0: 3 lakh पॉइंट पे।
1: हाँ जी,
0: मतलब एक, सिर्फ एक बंदे की 1.5 lakh की टिकट हो गई आने जाने की
1: एवरेज,
0: ओके
1: 70,000 की भी हो सकती है, 80 की भी हो सकती है, मैं एवरेज बता रहा हूँ आपको, मतलब कि सिंगापुर, बैंकॉक, वियतनाम, बाली, हांगकॉन्ग, ठीक है, एशिया में मोस्ट प्लेसेस में आप 3 to 3.5 lakh पॉइंट में आ सकते हो, अगर आपने ऑर्गेनिकली अर्न किया है, सिर्फ टैक्सेस पे करने हैं। अब टैक्सेस सुनो कितने के होते हैं, 200 to 500 के बीच में
0: जी,
1: मान लो वर्स्ट केस सिनेरियो 500 लगा लो, दो बंदों के 1,000 हो गया रिटर्न, तो अगर रिटर्न 1,000 है, 1 to 2 कितना हो गया,
0: 2,000 हो गया।
1: मेरे को ये बताओ कौन सा ट्रैवल एजेंट 2,000 में 2 लोगों की टिकट बिजनेस क्लास में मेलबर्न टू एशिया करता है।
0: ओके, जब आई गेट योर पॉइंट है ना, जब आप ये कहते हैं कि 50,000 तो हम इसी में से ही निकाल सकते हैं, सिर्फ वूलीज में से, अगर आपका 5-6 हज़ार का है ना, एक स्ट्रेटजी होगी ना, ऊबर कैश की तरफ से भी कर सकते हैं कि अगर आप ऊबर का कार्ड कर लें तो उसमें भी कोई ना कोई है ना,
1: कॉल्स के चलते हैं सिर्फ ऊबर के।
0: ये सेट प्रेसिडेंट पक्के ही होते हैं कि ये चेंज होते रहते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम की, आज है कल वूलीज बंद कर दे, या फिर ये कुछ पक्के अदारे हैं, कोई पक्के बिजनेसेस हैं जो क्वांटस पॉइंट्स पता है कि मिलेंगे ही मिलेंगे।
1: काफ़ी टाइम से, 12 साल से तो मैं कर रहा हूँ और पिछले 4-5 साल से तो ये वूलीज कर ही रहे हैं, कॉल्स भी कर रहे हैं
0: जी,
1: बंद करने को तो सर कल कुछ भी बंद हो सकता है, राइट कल किसने देखा, नो वन हैज अ क्रिस्टल बॉल
0: जी,
1: ठीक है ना, बट अभी कंसिस्टेंटली अगर हम ज़्यादा लंबा टाइम ना भी लें, 3 साल से तो मैं और मेरे 300 से ऊपर बिजनेस क्लाइंट्स कर रहे हैं। रेगुलरली किसी ना किसी का आता है टेक्स्ट या कॉल कि मेरे को अपने एम्प्लॉयज को इंसेंटिव देना है, कौन सा गिफ्ट कार्ड अभी चल रहा है, बिकॉज दे हैव नाउ रियलाइज, उनको पता लग गया है कि अब उनको सीधा कैश वूलीज जाके कैश नहीं देना, अब उनको अपना क्रेडिट कार्ड यूज करना है, ठीक है, और तब करना है जब ये ऑफर है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस जिनके पास एम्प्लॉयज हैं या अब एम्प्लॉयज को भूल जाओ, अब हमारे इंडियन कम्युनिटी में बर्थडे पार्टीज होती हैं
0: जी,
1: ठीक है, हम सबको कैश देते हैं, एनवेलप देते हैं, कुछ देते हैं, अगर आप क्रेडिट कार्ड दें, अगर आप गिफ्ट कार्ड दे सकते हो, काफ़ी यंगस्टर्स जो हैं उन वो तीन चार जो रिटेल आउटलेट्स हैं वो वहीं से लेते हैं, नाइकी हो गया, एडिडास हो गया, आपका H&M हो गया, ठीक है। अब ये सारे जो रिटेलर्स हैं इनके अलग से गिफ्ट कार्ड आते हैं, जैसे TCM ही हो गया, हिम में आप 50 रिटेलर्स के पास जाके वो सेम कार्ड यूज़ कर सकते हो।
0: और ये इजीली फिजिबली मिल जाते हैं, मैंने देखा हर सुपरमार्केट में, कोल्स में और वूलीज में,
1: हर हफ्ते कृष्णा हर हफ्ते किसी ना किसी गिफ्ट कार्ड पे डील लगी होती है, एवरी वीक। इस साल अभी आज क्या हो गया, जून हो गया
0: जी,
1: सिर्फ दो हफ्ते ऐसे आए हैं जहाँ पे 10% ऑफ था।
0: ओके,
1: उसके अलावा हर वीक 10 points per dollar ऑन गिफ्ट कार्ड्स।
0: Okay.
1: ये अगर आप सोचो कि 100-150 स्ट्रेटजीज हैं, ये एक बता रहा हूँ मैं अभी।
0: फिर बात ये आ जाती है, कई लोग इस पे बड़ा भाग जाते हैं कि यार इतना इतना कौन सोचे, क्या करे, कोई थंब रूल हो, कोई मुझे पता हो कि एक होता ना टिप हो, एक ट्रिक हो कोई, कि मुझे पता है कि इस तरह ट्रैक करना, एनीथिंग विच इज शेयरेबल ऑन योर पार्ट ऑल्सो, कि आप शेयर कर सको छोटा मोटा। मुझे पता कि ऑब्वियसली यू रन अ बिजनेस,
1: मैं आई विल डेफिनेटली हेल्प यू,
0: बुलाया आपको,
1: मैं थोड़ा क्वेश्चन समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर ट्रैकिंग की बात है, देखो हम वी इंडियंस हम बहुत वी वेरी स्मार्ट पीपल, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा वी पे द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ टैक्स। सो इफ यू, जहाँ तक ट्रैकिंग की बात है, अगर मैं आपको क्वेश्चन समझाऊँ, आप एक स्प्रेडशीट बना लो, सिंपल स्प्रेडशीट। आजकल तो AI आ गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ChatGPT क्लॉड लोग ड्राइव करते करते अपनी ईमेल्स टाइप कर रहे हैं। आप उतना मत करो, आप ChatGPT को, और आपसे स्पीच टू टेक्स्ट आ गया, कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, आप सिर्फ बोलो, रिकॉर्ड करेगा, स्प्रेडशीट बन के आ जाएगी, आप जस्ट रिकॉर्ड करो। दूसरी बात आती है कि कितना फीजिबल है, इसलिए मैं बिजनेसेस के साथ काम करता हूँ, बिकॉज इट्स ईजियर, क्योंकि उनको सिर्फ एक या दो मोटी मोटी स्ट्रेटजीज अपनानी है, ये सब छोटे मोटे काम करने की जरूरत नहीं है। ये तो मैं आई वॉज ट्राइंग टू हेल्प यू फॉर लाइक ऑल द व्यूअर्स, बट जो बिजनेसेस हैं, अगर वो सिर्फ अपना बिजनेस स्पेंड रीडायरेक्ट कर दें, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, 50% तो ऐसे हो गया। बट एक साफ सी बात है कृष्णा, अगर आपको अप टू 90% ऑफ चाहिए, बिना एफर्ट के नहीं मिलने वाला दोस्त,
0: ये तो बात ठीक है,
1: ठीक है ना, कोई भी चीज बिना एफर्ट के नहीं मिलती। जितने भी लिसनर्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया जो आए हैं, बिना एफर्ट के नहीं आए, कोई स्टूडेंट बन के आया है, कोई PR लेके आया है, एक बंदा मुझे बता दो जो एक दिन के एफर्ट के पीछे सब कुछ करके आ गया हो, राइट?
0: जी,
1: इट टेक्स एफर्ट। तो अगर आप चाहते हो कि आपको 90% बिजनेस क्लास सिंगापुर एयरलाइंस की लेस में मिले, और आप ये भी चाहते हो कि एफर्ट भी ना हो, कैसे पॉसिबल है
0: इसमें कोई? बिकॉज द मोर एग्जाम्पल्स आई गेट, द मोर इजियर फॉर मी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो, और लोगों के लिए भी उतने मेरे ख्याल से ईजी होगा। कोई एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग अगर समझा सकें, आपका पर्सनल हो या आपके किसी क्लाइंट की टेस्टिमनी के हिसाब से अगर हो।
1: सो अभी एक रिसेंटली मैं ग्रुप कोचिंग करता हूँ
0: जी,
1: राइट? आई डू 1-on-1 कोचिंग एंड आई डू ग्रुप कोचिंग। तो ग्रुप कोचिंग में अभी एक ग्रुप खत्म हुआ है, उसमें एक एशियन लेडी है, शी इज़ अ डॉक्टर यहाँ मेलबर्न में, नॉर्थ कट में, उनका अभी छोटा बच्चा है, टॉडला, तो उनको सिंगापुर जाना था नेक्स्ट ईयर फरवरी में, बट उन्होंने नहीं बनाया प्लान, बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू गो इन इकॉनमी। बिजनेस सपोर्ट कर सकते थे, लेकिन जब उन्होंने कॉस्ट देखी 30 grand, उनका रहने देते हैं, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। देन दे हर्ड अबाउट मी, उन्होंने मेरी एड देखी फेसबुक पे, बात करी, मेरी मास्टर क्लास ज्वाइन करी, देन दे ज्वाइन माई प्रोग्राम
0: जी।
1: ठीक है, अभी जो स्ट्रेटजीज मैं आपको बता रहा हूँ
0: जी,
1: जस्ट ये स्ट्रेटजीज मैंने अभी शेयर करी हैं
0: जी,
1: सिर्फ ये करके लास्ट 2 months में उन्होंने इतने पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए कि उन्होंने अपनी बिजनेस क्लास की टिकट्स खुद के लिए, अपने हस्बैंड के लिए और बेबी के लिए 3600 में सिंगापुर एयरलाइंस के साथ बुक करी है टू सिंगापुर रिटर्न।
0: अच्छा, वाह,
1: $3,600 AUD for 2 adults and a toddler return, आप बता दो कि it is a good deal or not?
0: It is a good deal, काफी good deal वैसे तो।
1: हाँ, अब ये जो लेडी हैं, ये थोड़ी सी analytical हैं, तो इन्होंने spreadsheet बनाई और देखा कि कितने घंटे लगे इनको ये सब कुछ करने में। 5 hours ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, कोई भी व्यूअर से, अगर ये टिकट, वैसे ये टिकट्स 15,000 की थी
0: जी,
1: इफ़ यू डिवाइड 15,000 बाई 5 hours कितना आता है?
0: 3,000।
1: हाँ
0: हाँ,
1: अब आपके व्यूअर्स से क्वेश्चन है, विच वन ऑफ योर व्यूअर्स वुड लाइक टू अर्न $3,000 पर आवर? सिंपल मैथ है ना
0: जी। इसमें एक अगर हम ये भी टेंटेटिव प्राइस बता सकें कि उसी सेम फ्लाइट में इकोनॉमी का अगर हम आइडिया लगाएं तो इकोनॉमी का क्या प्राइस रहा होगा?
1: इकोनॉमी तो कृष्णा और भी इजी हो जाएगी और भी सस्ती होगी। इकोनॉमी तो आई थिंक अभी पीछे फैमिली ऑफ सिक्स है तो एक ही प्लेन में 4 से ज़्यादा सीट्स मिलना मुश्किल होता है
0: जी
1: बिजनेस क्लास, क्योंकि अवेलेबिलिटी डिपेंड करती है एयरलाइंस पे कि वो कितनी रिलीज कर रही हैं। बट उन्होंने कहा कि हम इकोनॉमी में भी जा सकते हैं, उनकी मर्जी थी, उनको बस पैसे बचाने थे।
0: ओके,
1: राइट, साफ सी बात है। तो दे वर वेरी ओपन अबाउट इट। अब उन्होंने इतने पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए कि $1,200 में फैमिली ऑफ सिक्स इज गोइंग टू इंडिया एंड कमिंग बैक।
0: वाओ,
1: फैमिली ऑफ सिक्स, क्योंकि बाकी उनके पॉइंट्स ऑर्गेनिक थे। ऑर्गेनिक मतलब गिफ्ट कार्ड्स, अभी मैंने इंश्योरेंस की बात नहीं करी है, होम इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस,
0: ये सभी चाहिए हर कोई रह लेता।
1: कार किसके पास नहीं होती आजकल, प्राइवेट टैक्स किसको नहीं बचाना, राइट? कार, प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, आपके पास घर है, कंटेंट और होम इंश्योरेंस चाहिए। देयर आर सो मेनी कंपनीज गिविंग यू अप टू 100, अभी कॉन्टेस्ट की डील चल रही है राइट नाउ एज वी स्पीक, 2,00,000 पॉइंट दे रहे हैं वो।
0: अच्छा,
1: प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस पे अप टू 200,000। वैसे एक बिजनेस को $2,00,000 खर्चा करना पड़ता है टू अर्न 200,000 पॉइंट्स। अब कितनी फैमिलीज हैं जो महीने का 500, 600, 400 दे रही हैं बट कुछ मिल नहीं रहा। और अगर यही 600 दे के आपको 2,00,000 पॉइंट मिल रहे हैं 6 महीने में,
0: ह्यूज डील,
1: इट्स ह्यूज, ह्यूज।
0: और इसमें ये ज़्यादातर बिजनेस स्पेसिफिक रहती हैं ये डील्स वगैरह, कि अगर कोई कहते हैं नौकरी पेशे वाला कोई हो उसके लिए
1: कर सकते हैं, बट यू नीड अ फायर इन द बेली, लाइक एक बहुत ही जुनून चाहिए आपको करने के लिए। क्योंकि पहले पहले सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन जैसे अभी आपने बोला कि एफर्ट लगेगा, कोई ईजी तरीका, तो वो फिर शॉर्टकट्स ढूंढने में लग जाते हैं, राइट? बट अगर कोई भी बंदा या फैमिली 8 से 15 आवर्स अगर आप लगा सकते हो, मैं ओवर अ 6 मंथ पीरियड बोल रहा हूँ, इफ़ यू कैन डेडिकेट, क्योंकि कुछ टास्क में 5 मिनट लगेंगे, कुछ में 10 मिनट, कुछ में 15 मिनट लगेंगे, ठीक है? मोस्ट ऑफ द थिंग्स टू अर्न पॉइंट्स कैन बी डन वाइल सिटिंग एट होम ऑनलाइन
0: एंड नो एक्स्ट्रा खर्चा
1: ये मेन
0: है।
1: बट ये मेन नहीं होना चाहिए, बिकॉज मैं फिर से बोलूंगा, अगर आपको बिजनेस में ट्रेवल करना है और आप ये बोलो कि मेरी इकोनॉमी की टिकट 2,000 की आती है, 1,800 में नहीं हो सकता।
0: हाँ ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं से अल्टीमेटली यू विल गेट अ रिटर्न।
1: हाँ हाँ, लेकिन मेरे जो मोस्ट ऑफ माई क्लाइंट्स हैं वो ये बोलते हैं कि यार अगर हमें 2.5 की जगह 3 भी देने पड़े लेकिन 10 ना देने पड़े।
0: हाँ वो तो, हाँ मतलब everybody likes a good deal,
1: everybody would like to do it, right? Even without doing a survey, 90% of your client, जो आपके listeners हैं, अगर वो ये बात सुने तो 90% will put their hand up and say, yeah, मुझे 10 नहीं खर्च करने, लेकिन अगर 2 की जगह 2,200 या 2,500 या 3 खर्चने पड़े और बिजनेस क्लास मिल रही है, which means lounge 40 किलो, हमें क्या चाहिए होता है? लोग वेट एडजस्ट कर रहे होते हैं एयरपोर्ट पे। और एक और चीज है, जेट लैग। At least 5 families in the last 6 days have told me कि holiday से आए, बेटी बीमार हो गई, स्कूल नहीं गई, guess घर पे कौन बैठा है? Parents.
0: बिल्कुल सही।
1: और अगर बैठे हैं तो ख्याल किसको रखना है? Parents को।
0: बिल्कुल।
1: तो वो productivity कहाँ गई? Parents की productivity कम होगी ना?
0: बिल्कुल सही बात है।
1: और जब वो business में जाते हैं तो कोई jet lag नहीं होता।
0: ये वेट का तो बहुत इशू रहता,
1: ठीक है ना?
0: पर्सनली बहुत रोता हूँ इस चीज को लेकर, तो आपकी बात तो सही है।
1: तो और प्रीमियम इकोनॉमी तो इतना आसान है कृष्णा, अगर आप बिजनेस को छोड़ भी दो, प्रीमियम इकोनॉमी में ट्रैवल करना इज सो इजी फॉर अ फैमिली ऑफ 6, नॉट इवन 4।
0: अगर मैं इसे सॉरी आपको टोका अगर मैं इसे डाइसेक्ट कर दूं
1: जी,
0: मैं अगर पर पर्सन पर चलूं
1: जी,
0: तो अगर ऑन एन एवरेज मैं 80,000 पॉइंट कह लूं कि 80,000 पॉइंट में मेरे को वन वे की बिजनेस की टिकट मिल सकती है फॉर
1: आप 1,00,000 चलो मोटा मोटा
0: चलो 1,00,000 पॉइंट में ठीक ठाक बढ़िया एयरलाइन सिंगापुर एयरलाइन टाइप पे है ना, तो प्रीमियम इकोनॉमी और इकोनॉमी सेम उसी फ्लाइट की कितने पॉइंट्स में मिल जाती है पर हेड?
1: हम सिंगापुर एयरलाइंस की बात करें तो उनके जो फ्रीक्वेंट फ्लायर का नाम है वो है क्रिस फ्लायर
0: जी,
1: ठीक है, आपको 1,00,000 में अगर आप टाइम से करा लोगे तो 1,00,000 क्रिस फ्लायर में मेलबर्न दिल्ली मिल जाएगी
0: जी।
1: इकोनॉमी होगी आपकी प्रीमियम इकोनॉमी होगी अराउंड 75 की,
0: ओके
1: एग्जैक्ट तो मेरे को अभी नंबर नहीं पता,
0: बिजनेस का मुझे
1: पता, बिजनेस का मुझे पता बिकॉज आई डू इट एवरीडे। प्रीमियम इकोनॉमी होगी 70-80 के बीच में, 68 भी हो सकती है, अराउंड 70 लगा लेते हैं
0: जी।
1: और इकोनॉमी तो सिर्फ 50 में मिलती है। और एक और चीज आपके व्यूअर्स के लिए एक टॉप हैक बता रहा हूँ, अगर आपके पास सिंगापुर एयरलाइंस के पॉइंट्स नहीं भी हैं लेकिन आपके पास वेलोसिटी के पॉइंट्स हैं वर्जन ऑस्ट्रेलिया के, तो भी आप सिंगापुर एयरलाइंस की प्रीमियम इकोनॉमी बुक कर सकते हो एंड फॉर लेस पॉइंट्स देन सिंगापुर एयरलाइंस ओन प्रोग्राम।
0: ओके
1: मतलब जो उनका खुद का प्रोग्राम है
0: अच्छा
1: उससे सस्ते में उससे कम पॉइंट्स में आप वेलोसिटी के पॉइंट यूज करके सिंगापुर उन्हीं का प्रोडक्ट में आप फ्लाई कर रहे हो।
0: ओके अब इसमें एक और आ जाता है सवाल कि अब अगर मैं देखूं लोगों का जो इंटरेस्ट है रुझान है वो इस तरफ काफी जाना शुरू हो गया पॉइंट्स वगैरह
1: जी
0: इकट्ठे करने पे, तो ये कंपनीज क्योंकि आप कह रहे हो आप यू बीन डूइंग दिस फॉर 12-13 इयर्स है ना, तो ये कंपनीज इंसेंटिवाइज अब ज्यादा कर रही हैं पहले से कि कम कर रही हैं?
1: 100% ज्यादा कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया कि कॉन्टेस्ट 2,00,000 पॉइंट दे रही है
0: तो बढ़ रहा है, मतलब
1: बढ़ रहा है।
0: okay.
1: अभी AMP बैंक है, एक और चीज हमारे इंडियन व्यूअर्स के लिए, हमारे हम सेविंग्स में पैसा डालते हैं राइट 4.25% इंटरेस्ट जो भी है
0: जी,
1: उससे क्योंकि उस पर टैक्स लगता है
0: जी।
1: आप अभी AMP बैंक की डील चल रही है, आपको वो 1 point per $10 दे रहे हैं टू हैव इट इन योर बैंक अकाउंट।
0: Okay.
1: बहुत लोग ऑफसेट में रखते हैं ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत आपके व्यूअर्स होंगे जिनका 10, 50, $1,00,000 बैंक में ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसको अगर आप AMP बैंक में डाल दो तो आपको महीने के 10-50,000 पॉइंट तो सिर्फ उस खड़े पैसे के मिल रहे हैं। मतलब इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग, आप एक बार सोच कर देखो व्हाई विल अ बैंक डू दैट। ठीक है,
0: मैं इसमें ना बस ये आपने जितना बताया थैंक यू वेरी मच, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको ऐसा क्या हो गया था लाइफ में
1: जी
0: ऐसा क्या हो गया, ऐसे क्या घटना हो गई जो आपने इस तरफ रुख कर लिया
1: जी?
0: बिकॉज हैविंग सेड दैट ये मैं आपने क्या बताना है मैं ही बता दूं कि क्वांटस हो गए या वेलोसिटी वगैरह हो गया या फिर इन्होंने अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी का नाम लिया किसी बैंक कंपनी का नाम लिया तो वी नो दिस फॉर अ फैक्ट कि यू आर नॉट कमीशन्ड बाय देम,
1: नो
0: आप उनके एजेंट नहीं है,
1: नहीं, मेरा कोई
0: एफिलिएशन किसी के साथ ऐसा नहीं है, सच नहीं है, ये आपने देखा खुद से किया और आपको लगा कि ये और लोग भी सीख सकते हैं राइट? तो ये आपने जब देखा तो कब देखा और फिर कैसे ठीक किया?
1: ओके सर, 2 अगस्त 2013 को मुझे आज तक याद है, मैं लंदन गया था अपने भाई से मिलने के लिए
0: जी।
1: वो 2 साल के लिए लंदन गया था।
0: ओके
1: तो उसने बुलाया मुझे, तो उस टाइम पे एक कार्ड हुआ करता था वेस्टपैक का क्रिस फ्लायर कार्ड जो अब नहीं है।
0: ओके
1: ठीक है, वो लेगेसी कार्ड है, वो बंद कर दिया
0: जी।
1: उस टाइम मेरे पास 90,000 पॉइंट थे।
0: ओके
1: अब एज यू डू आजकल सोशल मीडिया पे आप बैठते हो, ये एक चीज दूसरी पे चली जाती है, दूसरी तीसरी पे चली जाती है
0: जी।
1: तो मैं बैठा बुक करने के लिए टिकट, तो मैंने अपना क्रेडिट कार्ड खोला, देखा ये 90,000 पॉइंट है। इससे पहले कि मुझे समझ में आता, मैं सिंगापुर एयरलाइंस की वेबसाइट के थ्रू मेलबर्न टू लंदन सिंगापुर एयरलाइंस बिजनेस क्लास $100 में बुक कर चुका था।
0: ओके
1: जब मैंने उसका बाद में प्राइस देखा तो वो 6,500 की थी उस टाइम पे।
0: अच्छा, उसने खुद से अपने आप को वहां पर ट्रांसफर किया? ओके,
1: क्योंकि मैंने अपने लॉग इन किया अपने क्रेडिट कार्ड के पोर्टल में देखने के लिए कि भाई कितना बैलेंस है क्या है, तो वहाँ पॉइंट्स लिखा आ रहा था 90,000। तो मैंने देखा कि क्रिस फ्लायर है, तो क्रिस फ्लायर तो सिंगापुर एयरलाइंस का प्रोग्राम है, देखा ट्रांसफर किया तो ट्रांसफर साथ के साथ हो गए। हो गए तो वहाँ पे चीज़ लेके आ रही थी अवार्ड्स रिडीम, बटन दबाया बैठे हो, बटन दबाते हो, बटन दबाए तो डाला और टिकट आ गई अवेलेबल। 90,000 पॉइंट चाहिए थे, 90,000 थे
0: जी।
1: अब शुरू कैसे हुआ कि मैं चला तो गया बिजनेस क्लास में बड़ा खुश होके $100 में, लेकिन वापस आया इकोनॉमी में
0: पॉइंट खत्म हो गया
1: पॉइंट ही नहीं अब आप खुद सोचो आप इतनी चौड़ी आपने देखी है सीट सिंगापुर एयरलाइंस की
0: जी जी जी
1: ठीक है
0: जी
1: इतनी चौड़ी होती है
0: जी
1: राइट और इकोनॉमी कितनी होती है आपको ऐसे खाना पड़ता है
0: मेरा तो ज्यादा ही बुरा हाल होता है मैं तो घुटने
1: आप अपने टक ये हाँ
0: यस
1: आपके मोड़े टकरा रहे हैं साथ वाले के साथ
0: जी
1: ठीक है
0: बिल्कुल
1: तो जब मैं वापस आया तो मैं लिटरली टीयर्स में था जैसे कहते हैं ना मैन टीयर्स लिटरली टीयर्स में था तो मैंने फिर सोच लिया कि बस अब मैंने कुछ करना है इसको पढ़ना है तो वो अगस्त 2013 से लेके अगस्त 2014 तक मेरी उस टाइम पे बहुत स्टेबल जॉब थी तो मैंने अपनी इवनिंग्स और वीकेंड्स इसको डेडिकेट किए
0: ओके
1: और फिर अगस्त 2014 से लेके आज तक मैंने फुल प्राइस नहीं पे किया बट बिजनेस मैंने 2021 में शुरू किया एक फ्रेंड की हेल्प करी
0: okay.
1: तो उसने मुझे बोला कि यार तूने मेरे $20,000 बचा दिए 10 मिनट के अंदर उसके बस 1 million पॉइंट्स थे लेकिन उसको पता नहीं था करना क्या तो उसने कहा तू इस चीज दूसरों को सिखाता क्यों नहीं है एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड एंड हेल्पिंग अदर बिजनेस ओनर्स
0: क्या बात है भाई रॉकस्टार में था टूटे दिल से ही म्यूजिक निकलता आपके ट्रॉमा से काफ़ी लोग सीख पाए हैं और सीख रहे हैं थैंक यू गगन जी शॉर्ट एंड क्रिस्प चैट करने के लिए हमारे साथ जाने से पहले एक क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट कह लें अपनी तरफ से या क्लोजिंग थॉट अपनी तरफ से और अपने सोशल्स और अपने वेबसाइट के बारे में बता दें हमारे व्यूवर्स को ताकि दे कैन कॉन्टैक्ट यू
1: जी पहली बात तो ये है कि देखो पैसा बचाना किसको नहीं अच्छा लगता
0: जी
1: और अच्छा लाइफस्टाइल किसको नहीं चाहिए
0: जी
1: ठीक है मोस्ट ऑफ योर व्यूअर्स वुड बी बिटवीन 30 and 60 years of age सो दे हैव लिव्ड देयर फर्स्ट हाफ ऑफ देयर लाइफ और लोगों को होता है कि यार मैं अपना सेकेंड हाफ तो कम से कम थोड़ा सा कम्फर्ट में बिताऊँ तो जब हम इतने पैसे खर्च कर रहे हैं इतनी आउटगोइंग्स जा रही हैं अगर एक तरीका है उसको मैक्सिमाइज करने का बिना पैसे खर्च किए अभी ऑर्गेनिक पॉइंट्स की बात हो रही है हमने बिजनेस की बात तो करी ही नहीं ज़्यादा ठीक है अगर एक तरीका है तो मैक्सिमाइज इट तो आप क्यों ना करो स्पेशली अगर आपकी फैमिली को या तो उसमें कंफर्ट मिल रहा है या पैसे बच रहे हैं ठीक है नाउ इन रिगार्ड्स टू गेटिंग इन टच विद मी जो भी आपके बिजनेस व्यूअर्स हैं जो खुद का बिजनेस रन करते हैं दे कैन गो ऑन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चाहे वो लिंक्डइन हो चाहे फेसबुक हो चाहे टिकटॉक हो या फिर इंस्टाग्राम हो एंड यूट्यूब ऑल दे हैव टू डू इज टाइप इन टर्न लेफ्ट फॉर लेस क्योंकि हम जब एयरक्राफ्ट के अंदर जाते हैं तो हम टर्न हम राइट टर्न होते हैं टू इकोनॉमी वे डू वी टर्न लेफ्ट इन टू बिजनेस एंड फर्स्ट तो मेरे बिजनेस का नाम उसी से आया टर्न लेफ्ट फॉर लेस तो अगर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो डाल देंगे तो हर पोस्ट में मेरा या तो लिंक होगा या वेबसाइट होगी और अगर आपके बिजनेस लिसनर्स मेरी मास्टर क्लास अटेंड करना चाहते हैं जो हर महीने होती हैं इस महीने वो 24th जून को है देन द वेबसाइट एड्रेस इज एल पी ठीक है एल फॉर लीमा पी फॉर पापा एल पी जैसे लैंडिंग पेज होता है ना lp.turnleftforless.com
0: जी
1: और लास्ट थिंग अगर किसी को डायरेक्ट ईमेल करनी है तो वो info@turnleftforless.com पे हमें ईमेल कर सकते हैं कोई भी उनका क्वेश्चन हो आपके अगर वो रेडियो हंजी करके लिखेंगे आई एम हैप्पी टू आंसर एनी क्वेश्चन
0: इसलिए तो बुलाया है कि जी रेडियो हांजी के हवाले से आप इनसे बात करें फ्री कंसल्टेशन ले एक बार और फिर बाद में जैसा आपका मन माने वन ऑन वन करनी है जी मास्टर क्लास ज्वाइन करनी है तो आप कर सकते हैं ये था जी आज का सेगमेंट आपके लिए हम लेकर आए थे स्पेशली जानने के लिए कि भाई ये क्वांटस फ्लायर की दुनिया ये वेलोसिटी पॉइंट्स की दुनिया ये सब भी एक चलता हुआ एक पैरेलल सिस्टम है टू बुक योर फ्लाइट्स और पैसे बचाने के लिए पैसे खर्चा आजकल काफ़ी बढ़ भी गया है एपिसोड कैसा लगा और ये भी हमारे साथ फीडबैक ज़रूर शेयर करें कि जब आप गगन जी से बात करें तो आपको कैसा लगा और आपकी लाइफ में कोई खास तब्दीली आई या नहीं आई कुछ सीख पाए या नहीं सीख पाए ये था हमारा प्यारा सा स्पेशल सेगमेंट मैं हूं कृष्णा टेक केयर बाय बाय देखते रहें सुनते रहें रेडियो हांजी 1674 AM

0: Are you ready to start something? Do what you love? With 38 free TAFE courses and over 130 nationally recognised qualifications, including health, nursing, community services and justice, come to Kangan Institute, the Australian Large Training Provider of the Year 2022. No ATAR needed. It's time to unleash you at Kangan Institute. Call 13 TAFE to apply now or visit kangan.edu.au. Eligibility criteria applies. Some or all of this training is delivered with Victorian and Commonwealth Government funding. RTO 3077.
1: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है
2: जुगाड़ नहीं ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा एएटी अपील्स स्किल्ड वीजास पीआर यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने
1: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा
2: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au
3: सोना चाहिदा
4: भरोसा चाहिदा
3: क्वालिटी ते बायबैक वी चाहिदा चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे जिथे बाई कैरेट गोल्ड क्लासी सिल्वर डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत कैश चाहिदा गोल्ड लोन इजी एंड सेफ रिपेयर बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजब रेट ते दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक कॉल

0: ब्रोकर्स अपनी इंश्योरेंस की हर लोड़ ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555 गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।
1: जदों भी कॉमेडी मूवी दी गल हुंदी है ता एक मूवी दा नाम हमेशा आंदा है, ओ मूवी जिन्हें सब नू हसा हसा के लोटपोट कीता, ओ मूवी जिदी स्टोरी ने ब्रेन रॉट कीता।
2: गिप्पी ग्रेवाल, बिन्नू टिल्लो, सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो बड़ी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4, जिथे एडवोकेट टिल्लो फिर कहेंगे
3: पर टिल्लो ने काला कोट एवें नहीं पाया।
1: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर दा स्टेडियम, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं लाफ्टर दा फेस्टिवल है।
0: ऑर्बिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लई बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24-month प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 04332802552 04332852 ते।

0: किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो, आ गया ZJ स्टोन मेसन, फाड़े करनू बनाए एकदम क्लासी, असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल, हुन ना सिर्फ कर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410 045 555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
1: जदों भी कॉमेडी मूवी दी गल हुंदी है ता एक मूवी दा नाम हमेशा आंदा है, ओ मूवी जिने सबनु हसा हसा के लोट पोट कीता, ओ मूवी जिदी स्टोरी ने ब्रेन रॉट कीता।
2: गिप्पी ग्रेवाल, बिन्नू टिल्लों, सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो बड़ी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4, जिथे एडवोकेट टिल्लो फिर कहेंगे
3: पर टिल्लो ने काला कोट एवें नहीं पाया।
1: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर दा स्टेडियम, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं ये लाफ्टर दा फेस्टिवल है।
0: ओपिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लई बनाउंदे ने उनां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ओपिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद इन इंडस्ट्री लीडिंग 24-month प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ओपिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 04332802522 ते।